रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस समय आप स्कंद माता के स्वरूप के बारे में जान रहे हैं। माता सिंह पर सवार रहती है, लेकिन कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी चार भुजाएं हैं, इनके ऊपरी दोनों हाथों में कमल हैं और एक हाथ में पुत्र स्कंद यानी बाल रूप को उन्होंने थामा हुआ है और चौथा हाथ हमेशा वर मुद्रा में ही रहता है।

श्रोताओं, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्कंद माता की। जी हाँ, देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से ये 5वां स्वरूप स्कंद माता का है।

अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात करें तो स्कंद माता बुध यानी मरकरी ग्रह को नियंत्रित करती हैं। साधना में इनका ध्यान विशुद्ध चक्र या कुछ मान्यताओं में मणिपुर चक्र भी कह सकते हैं, इस पर किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजन विधि है। आज स्कंद माता की बात हो रही है तो इस दिन पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माता को केला अति प्रिय है तो पूजा में केले या फिर केले से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए।

जो भक्त माँ स्कंद माता की उपासना करते हैं उन्हें संतान सुख, मोक्ष, ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, आप सभी माताओं का, सभी नवदुर्गाओं का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की साधना का समय है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मान्यता यह है कि इन 9 दिनों में माता पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर करके उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

क्यानो नश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तो हाँ दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो यो कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने वहाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंचन धर्मशाला ने गूंज अपने तंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहा कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने। तोहा सारे इंगे बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहां कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने। तोहां सारे इन्हें बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

कहते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होता हो तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोता होता बढ़ देना कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: उड़ क्या रहे हो? अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: काला है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
3: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों
6: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
12: तो मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित, मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग अपना।
14: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: अरे ललक, तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। मां स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते।

0: कभी नोटिस किया है? मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
1: एक्सक्यूज मी सर,
2: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
2: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
3: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
4: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
5: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
6: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
7: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
8: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
9: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
10: मोहित मेरा इस्तीफा।
11: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
10: सॉरी यार,
11: काम कीजिए आप लोग।
9: एचआईवी एड्स अपने पन को नहीं मार सकता।
12: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
13: अरे बेटा,
12: अरे ललक, तुझे इतना काम नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो हैं वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफ़र की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए लेके चलते हैं इस गीत की ओर आप सभी को।

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। मां स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी।
4: उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को अलग

0: कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
1: मोहित, मेरा इस्तीफा।
2: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
1: सॉरी यार,
2: काम कीजिए आप लोग।
0: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
3: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
4: अरे बेटा,
3: अरे इतना काम नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे भादू शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भैरे होगी हो क्या तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

91.2 MHz और ये है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओ, प्रातः के 9 बज चुके हैं और रेडियो गुंजन के स्टूडियो में हम हाजिर हो चुके हैं आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करने, जानकारियां

साझा करने और आपको प्यारे प्यारे से गीत सुनवाने के लिए। और हम जानते हैं कि हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतज़ार रहता है सुबह के 9 बजने का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने का। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए जानते हैं इस समय धर्मशाला का तापमान। 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं, और वातावरण में नमी है 72%। हल्की फुल्की बारिश जो है वो इस समय हो रही है, और दिन भर में भी हल्की फुल्की बारिश जो है उसके आसार हैं, उसकी संभावना जो है वो जताई जा रही है। और श्रोताओं, मौसम कुछ इस तरह का है कि कल तक भी जो है वो बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और हम आपका ख्याल रखेंगे रेडियो गुंजन के माध्यम से आपके मनोरंजन का। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये सबसे पहला प्यारा सा ट्रैक।

जी हाँ श्रोताओं, मीठी मीठी सर्दी है और इस सर्दी से हम ये शिकवा और शिकायत भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा गीत आपने रेडियो गुंजन से सुना, मीठी मीठी सर्दी है। और इस समय धर्मशाला का टेम्परेचर कहें, धर्मशाला का जो मौसम कहें, वो भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है। हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी ठंड है और इस ठंड को हम कह सकते हैं कि बहुत मज़ेदार सी ये ठंड है जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा कपकपी लाने वाली ठंड है और ना ही ऐसा मौसम है कि हम कुछ कर ना सकें। इस ठंड को इंजॉय करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं इंजॉय करते हुए, और साथ ही साथ प्यारे प्यारे गीत इस समय आप रेडियो गुंजन से सुन भी रहे हैं। और भी प्यारे प्यारे गीत आपको कार्यक्रम में सुनवाएंगे श्रोताओं। कार्यक्रम में फ़िलहाल समय हो रहा है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए लिए चलते हैं आपको आज के विचार की ओर। सुनवाते हैं क्या कहता है हमारा आज का विचार। अपने स्किल और टैलेंट को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कल को जीरो से भी शुरू करना पड़े तो डर ना लगे। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं आज का विचार। अपने स्किल और टैलेंट को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कल ज़ीरो से भी शुरुआत करनी पड़े तो डर ना लगे। जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी में कब हमें ज़ीरो पे आकर के खड़ा होना पड़े इसका कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो उसे इतना तराशिए, इतना मजबूत बनाइए कि कल को अगर आपको फिर से शुरू करना पड़े तो आपको ये ना लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं आता है। बहुत से लोग हमारे आसपास भी होंगे, हमारे रिश्तेदारी में, हमारी जान पहचान में भी होंगे, या कई बार हम खुद ही अपने लिए बहुत बड़ा एग्जांपल होते हैं। ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पे आके हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ज़ीरो पे पहुंच गया है। और उस वक्त अगर हम निराश हो जाएं, रोना शुरू कर दें, तो ज़िंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देगी। इसलिए उस वक्त थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होता है। मुश्किल दौर हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन आज का विचार जो हमने आपके साथ साझा किया कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई भी स्किल है, तो उससे आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को ज़ीरो से खड़ा कर सकते हैं। तो यही था आज का विचार श्रोताओं। अगर कुछ भी आपने किया है, ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत समय पहले कोई काम किया है और छोड़ दिया है और आपको लगता है अब वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन फिर से उस काम को अगर हम करना शुरू करते हैं तो फिर से उस काम में वही चमक आती है, वही काम हमें अच्छा लगने लगता है और उस काम में हमारी स्किल जो है वो और अधिक निखर कर सामने आती है। तो आई विश कि आपके अंदर भी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी, उस पे काम कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ज़ीरो पे पहुंच के दोबारा से शुरू करें, लेकिन ज़िंदगी में स्किल्स बहुत ज़रूरी है और बहुत जगह पे काम आती हैं। श्रोताओ, यही था हमारा आज का विचार जो विस्तार से आप तक मैंने पहुंचाया। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा ट्रैक।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप हैं इस समय हमारे साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब आपको बताना चाहेंगे बहुत खास, जी हाँ, आज है 15 अक्टूबर और आज के दिन मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। जी हाँ श्रोताओं, विश्व विद्यार्थी दिवस 2026 आज मनाया जा रहा है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष पर 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है और ये अवसर राष्ट्रीय विकास में शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन, युवा सशक्तिकरण और नवाचार की भूमिका को उजागर करता है। अब्दुल कलाम जी के शिक्षण और विद्यार्थी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को ये दिन दर्शाता है। हालांकि विश्व विद्यार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित कोई दिवस नहीं है, लेकिन भारत में और क्योंकि अब्दुल कलाम जी की जयंती आज के दिन मनाई जाती है और इसी उपलक्ष पर ये जो दिन है ये मनाया जाता है। और श्रोताओं, आधिकारिक रूप से कोई दिवस घोषित हो या ना हो, लेकिन हमें लगता है कि विद्यार्थी जीवन जो है वो हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं एक स्टूडेंट की तरह, चाहे हमने किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला लिया हो या ना लिया हो। और हमें एक विद्यार्थी ही बने रहना सारी ज़िंदगी अगर बनना पड़े तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है। जब तक हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ सीख रहे हैं और सीख सकते हैं, तब तक हमारा विकास होता है। जिस दिन हम समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, उस दिन हमारा पतन जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि संगीत की ही बात करते हैं, संगीत की ओर मेरा खासा रुझान है। संगीत के कुछ एक ऐसे दिग्गज हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने शिक्षित किया है और उनके द्वारा शिक्षित किए गए लोग आज बहुत नाम कमा रहे हैं। और आपको पता है सोशल मीडिया का सहारा लेकर के लोग जो है वो रात दिन चमक जाते हैं, एक ही रात में उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो रातों रात स्टार बने हैं, लेकिन उनके द्वारा ली गई शिक्षा के बाद उन्होंने खूब मेहनत की है और गायकी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। लेकिन बात करें उनकी, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी है, वो आज भी अपने आप को शिक्षार्थी कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं और संगीत का विद्यार्थी लिख करके वो अपने आप को संबोधित करते हैं। वैसे एक नहीं, बहुत से लोग हैं और ये सिर्फ संगीत जगत की बात है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हैं। और इंजीनियरिंग भी आपको पता है ऐसी फील्ड है जहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है और वो भी कहते हैं वी आर स्टिल लर्निंग। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ये जो अपने आप को विद्यार्थी बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत है। ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो स्टूडेंट ही बने रहना चाहिए। श्रोताओं, चलिए बातचीत आगे और भी होगी, मनोरंजन रुकना नहीं चाहिए। श्रोताओं, लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत। और आज है विश्व विद्यार्थी दिवस और इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम बातचीत करते रहेंगे। श्रोताओं, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब जानकारियों की ओर रुख करते हैं। श्रोताओ, एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सहायक आयुक्त कांगड़ा विवेक चौहान ने जानकारी दी है कि भारतीय सैन्य पुलिस द्वारा टांडा फायरिंग रेंज में 16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत उन्होंने फायरिंग रेंज के निकटवर्ती गांवों कोहाला, कच्छारी, खोली तथा घुरकड़ी के लोगों से आग्रह किया है कि वे 16 अक्टूबर को निर्धारित फायरिंग प्रशिक्षण के समय फायरिंग रेंज के आसपास न स्वयं जाएं और ना ही अपने मवेशियों को जाने दें। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 91.2 MHz पर आप हैं श्रोताओं, इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं मेरे यानी आपकी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं आज के खास दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, विश्व विद्यार्थी दिवस आज मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, ये आज का जो आयोजन है, शिक्षा तक पहुँच, रचनात्मकता, वैज्ञानिक जिज्ञासा, नेतृत्व और छात्रों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने को बढ़ावा देता है आज का ये दिन। अपने नाम के बावजूद विश्व छात्र दिवस को भारत के बाहर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में आधिकारिक मान्यता वैसे तो प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे एक नामित दिवस घोषित अभी नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से इस दिवस को मनाने के लिए सदस्य देश और महासभा की भागीदारी वाली एक औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक है। ये अवसर शैक्षिक मान्यता, डिजिटल साक्षरता, व्यावहारिक कौशल और सामाजिक और आर्थिक विकास में छात्रों की भागीदारी पर ध्यान आकर्षित करता है। श्रोताओं, विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में हम कार्यक्रम में आगे और भी बातचीत करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ है कार्यक्रम में आपके साथ साझा करने के लिए। फिलहाल बहुत कुछ साझा करते करते आपका मनोरंजन हम ना भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर।
1: बात मेरी

0: खफा खफा।
1: बात मेरी सुनिए तो जरा,
0: कहिए आपको है कहना क्या।

जी हाँ श्रोताओं, बात अब आपको मेरी भी सुननी होगी। एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं श्रोताओं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने बीते कल काजा स्थित CBSE स्कूल के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब सहजता से दिए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। विद्यार्थियों ने काजा स्कूल को CBSE से संबंध करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दूरदराज के स्पीति क्षेत्र में CBSE पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध होंगे। संवाद के दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि स्कूल में 85 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से 46 छात्राएं छात्रावास में रहती हैं। उन्होंने छात्रावास में कुक, सफाई कर्मचारी और महिला वार्डन की कमी का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए भी अलग आवासीय ब्लॉक तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में एक बेहतर स्कूल विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ संवाद करके उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि समय रहते उनकी सभी समस्याओं को जो है वो ठीक कर दिया जाएगा। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का। बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

14.91 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आज है श्रोताओं 15 अक्टूबर का दिन और क्या कुछ दर्ज है आज के दिन इतिहास में, आइए जानते हैं। श्रोताओं 15 अक्टूबर 1240 दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1542 मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। 1764 बक्सर का युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। 14 इतिहास के पन्ने फिर से पलटेंगे कार्यक्रम में, समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, आइए चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर।

0: लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाया राजनीतिक लाभ लेने का आरोप और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल से धर्मशाला में। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त को समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके तहत 40% दिव्यांगता पर ही दिव्यांगजन जन्म से पेंशन के हकदार होंगे। अभी ये पेंशन 18 वर्ष से अधिक आयु और 80% की दिव्यांगता वालों को ही मिलती है। मंत्रिमंडल ने उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से नैतिक शिक्षा शुरू की जाएगी, जिसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने काजा स्थित CBSE स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद के दौरान कहा कि स्पीति क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास और शिक्षकों के लिए आवासीय ब्लॉक बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पीति के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और पर्यटन संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करने की बात भी कही। प्रदेश में खनन से जुड़े कामकाज को अलग और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सरकार ने खनन निदेशालय के गठन को मंजूरी दे दी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: उद्योग विभाग के अधीन ये निदेशालय तत्काल प्रभाव से काम करेगा। इसके प्रमुख निदेशक खनन होंगे और निदेशालय के प्रशासनिक कामकाज, निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। निदेशक खनन की नियुक्ति IAS कैडर से की जाएगी। इस संदर्भ में उद्योग विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि निदेशालय पर उद्योग विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। इस निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए उद्योग विभाग से 7 पद स्थानांतरित किए जाएंगे। इनमें एक संयुक्त निदेशक, एक सहायक वित्त एवं लेखा नियंत्रक, एक अधीक्षक ग्रेड वन, एक वरिष्ठ सहायक, 3 कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT और एक चपरासी का पद शामिल है। इसके अलावा 4 मल्टीटास्क वर्कर आउटसोर्स आधार पर रखे जा सकेंगे। सरकार निदेशक खनन को जरूरी अधिकार और जिम्मेदारियां देने के लिए संबंधित नियमों व अधिसूचनाओं में भी संशोधन करेगी, ताकि खनन से संबंधित प्रशासनिक कामकाज के लिए एक समर्पित व्यवस्था तैयार की जा सके। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: हमीरपुर जिले के CBSE स्कूलों में विद्यार्थियों को अब किताबों के साथ डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए जिले के 19 CBSE स्कूलों के पुस्तकालयों को कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: जिले के 19 CBSE स्कूलों के पुस्तकालय अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर इन्हें डिजिटल सुविधा से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के साथ कंप्यूटर व इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, जिससे वे ऑनलाइन पढ़ाई, कोचिंग और पाठ्यक्रम से जुड़ी डिजिटल सामग्री का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए 19 स्कूलों के प्रभारियों को 1 माह के भीतर अपने अपने स्कूल की रिपोर्ट तैयार कर देनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों में कंप्यूटर व अन्य जरूरी संसाधन ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रदेश में NCC और विमानन प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। करीब 3 दशक के इंतजार के बाद कुल्लू एयरपोर्ट पर NCC का पहला माइक्रोलाइट विमान पहुंचा है। इस विमान को पंजाब एयर स्क्वाड्रन NCC के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन बलजिंदर सिंह गिल और हिमाचल प्रदेश एयर NCC यूनिट कुल्लू के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर कुणाल शर्मा उड़ाकर कुल्लू लाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: कुल्लू एयरपोर्ट पर NCC का पहला माइक्रोलाइट विमान पहुंचाने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे। अब हिमाचल प्रदेश के NCC कैडेट्स को उड़ान प्रशिक्षण के लिए पटियाला नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें कुल्लू में ही विमानन प्रशिक्षण का अनुभव मिलेगा। इससे युवाओं को भारतीय वायुसेना और नागरिक विमानन के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए कुल्लू से मैं आशीष शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
4: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
5: और ये त्वचा पे काला निशान,
4: इसे हल्के में मत ले रमेश।
5: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
4: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनाव से पहले नए जिलों का मुद्दा उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है और अब जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए नए जिलों के गठन को लेकर आयोग बनाने की बात कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को पता है कि देश भर में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में नए राजस्व क्षेत्रों के गठन से जुड़े फैसलों पर भी बंदिशें हैं। उन्होंने दावा किया कि जनगणना के दौरान परिसीमन फ्रीज होने के कारण नई राजस्व इकाइयां नहीं बनाई जा सकती, ऐसे में सरकार की इस पहल पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नए जिलों के गठन को लेकर भाजपा का रुख पार्टी के चर्चा के बाद तय किया जाएगा। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में कल से 2 दिवसीय ई गवर्नेंस सुधार विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल होने का कार्यक्रम है। उपायुक्त

0: में शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है।
1: चंबा जिला के चांजू क्षेत्र में सड़क सुविधा बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने जखला से दंतुई तक सड़क की टारिंग का कार्य शुरू कर दिया है। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग पर 1,35,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा टारिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग नगरोड़ के सहायक अभियंता संजीव अत्री ने कहा कि सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।
2: चांजू एरिए की सड़क की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। हमें सरकार द्वारा DLP मेंटेनेंस के तहत जो है वो पैसा मिला था, जिसका लोक निर्माण विभाग ने टेंडर किया और आजकल जो है उसका कार्य प्रगति पर है और एक आध दिन में जो है इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। ये सड़क PMJSY के तहत इसकी टारिंग की जा रही है, जिसमें लगभग 1,35,00,000 रुपए का खर्चा आएगा।
1: प्रदेश में आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि कुछ अन्य इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जबकि चंबा, कांगड़ा व कुल्लू जिलों के कई भागों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। इधर राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर में बर्फबारी और अन्य सभी जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में नए जिले बनाने की तैयारी, 4 सदस्य आयोग गठित। दैनिक भास्कर की एक खबर है, IGMC और चमियाना से डिस्चार्ज होना भी महंगा, फॉलोअप के नाम पर 25 रुपए फीस। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, हिमाचल सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी पॉलिसी में किए बदलाव वैध, गाड़ी का मालिक होना जरूरी। रैगिंग मामले में MBBS के 9 छात्रों पर निलंबन की गाज शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद फैसला। मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है, कुंजुम टनल बनाएगी सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा की शर्त की समाप्त, अब जन्म से होंगे पेंशन के हकदार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी नैतिक शिक्षा की पढ़ाई। प्रदेश में खनन से जुड़े कामकाज को अलग और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बनेगा खनन निदेशालय। चुनाव से पहले नए जिलों के गठन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाया राजनीतिक लाभ लेने का आरोप। और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल से धर्मशाला में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का प्रादेशिक समाचारों के बाद फिर से स्वागत है। लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और इस वक्त आप हमें लाइव सुन पा रहे हैं और सुनने के साथ साथ अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बता दें कि फेसबुक पेज पर भी हम लाइव आ गए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पेज पर तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं श्रोताओं। और अपने श्रोताओं को बता दें कि आज है 15 अक्टूबर और आज के दिन विश्व विद्यार्थी दिवस हम मना रहे हैं। और विद्यार्थी जीवन श्रोताओं हमारे जीवन की वो हम कहें स्टेज होती है जहां हम सीखते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और ज़िंदगी के सबक भी लेते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं हमें लगता है कि हम पढ़ लिख गए हैं, अब विद्यार्थी जीवन को अलविदा कह देते हैं और मुझे लगता है वहीं पे हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो है वो ताउम्र चलता है और जो अपने आप को ताउम्र विद्यार्थी समझता है वो जीवन में बहुत कुछ सीखता है, बहुत आगे तक जाता है। और श्रोताओं, मैंने कुछ समय पहले भी आपके साथ जिक्र किया कि जब हमें लगता है कि हम सीख गए हैं, हमें और अधिक सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त हम थोड़ा सा अपने हम कह सकते हैं अपनी गति को, अपने जीवन की तरक्की को रोक लेते हैं। हमें अपने आप को विद्यार्थी ही समझते रहना चाहिए। और हमारे एक संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनका नाम मैं किसी और कार्यक्रम में साझा करूंगी, जिन्होंने बहुत से अपने संगीत के स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें शिक्षित किया है और उनके द्वारा पढ़ाए गए, सिखाए गए जो स्टूडेंट हैं वो अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। लेकिन इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद भी वो अपने आप को गुरु नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि एक व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी ही रहता है और वो अपने नाम के साथ भी संगीत विद्यार्थी इस तरह से अपने नाम के साथ अपना सरनेम लगाते हैं। और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया लगती है कि इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने आप को अभी भी विद्यार्थी ही कहता है। तो इस तरह के लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और विद्यार्थी जीवन हमें वाकई में बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं अगर हम विद्यार्थी ही बने रहते हैं तो। और यूं ही जो भी मौका मिले, कहीं से भी आपको कुछ सीखने का, ज़रूर सीखिए, ज़रूर ग्रहण कीजिए। आज है 15 अक्टूबर, विश्व विद्यार्थी दिवस हम मना रहे हैं श्रोताओं। और यही कहेंगे कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की ललक है, कुछ जानना चाहते हैं, तो ये मत अपने अंदर अहम पालिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें बहुत कुछ आता है। थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ को रिवाइज़ कीजिए, फिर से विद्यार्थी बन जाइए और देखिए आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत गहन अध्ययन उसका आप कर पाएंगे। और फेसबुक पेज पर हमारे साथ हमारे कुछ श्रोता जुड़े हैं, इंदु बाला जी, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने फेसबुक पेज पर भी। और आपने बड़ा अच्छा एक कमेंट भी लिखा है जिसको हम एक प्यारे से गीत के अंतराल के बाद ज़रूर अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। और अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं आप भी हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं और आपके द्वारा भेजे गए जो संदेश हैं उनको भी हम अपने श्रोताओं के साथ जरूर साझा करते हैं कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं 15 अक्टूबर 2026 आज की तिथि और आज 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है विश्व छात्र दिवस। हमारे देश के महान राष्ट्रपति हम कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आज का ये दिन जो है ये मनाया जाता है। विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं और विद्यार्थी अगर हम ताउम्र बने रहते हैं तो ताउम्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। श्रोताओं इसी विषय पर कार्यक्रम में हम बात भी कर रहे हैं और अपने श्रोताओं के साथ फेसबुक के माध्यम से भी हम जुड़े थे और हमारे श्रोताओं में से एक इंदु जी ने हमें बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए जिस भी उम्र में हमें सीखने का मौका मिले हमें ज़रूर सीखते रहना चाहिए। तो इंदु जी का ये कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए अपने श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि आज का कार्यक्रम उन्हें बेहद पसंद आ रहा है और कार्यक्रम में सुनाए जा रहे गीत भी उन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी आपका भी और हमारे बाकी श्रोताओं का भी जो धैर्य से मन लगाकर हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। श्रोताओं आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ लाता है और सिर्फ प्यार ही नहीं कुछ और भी वजह हैं क्योंकि हमारा भी आने का मन होता है इसलिए हम खींचे चले आते हैं। और आज सुबह की ही अगर हम बात करें तो सुबह जब हम उठे थे धर्मशाला में तो शायद मौसम थोड़ी लेट ख़राब हुआ, लेकिन जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ रात भर से ही बहुत ख़तरनाक वाली बारिश थी और बीच बीच में जब नींद टूट रही थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं सुबह समय पे पहुँच पाऊँगी या नहीं, लेकिन इतनी बारिश इतनी ठंड और यहाँ आने का जो जुनून हमें सवार होता है, जुनून ही कहूँगी, सही समय पर पहुँचना बेहद ज़रूरी होता है। बल्कि रेडियो के साथ एक समय था जब हम लोग अपनी घड़ियाँ मिलाते थे, लोग जब घड़ी नहीं पहनते थे या उन्हें समय की जानकारी लेनी होती थी श्रोताओं तो वो कहते थे कि रेडियो चल रहा है और रेडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से वो जान लेते थे कि इस समय समय क्या हुआ है। तो अगर रेडियो वाले ही समय के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करेंगे खिलवाड़ करेंगे तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह रेडियो को लिया जाता है कि रेडियो के साथ जो है वो समय का बहुत ही गहरा नाता है। सही समय रेडियो के साथ मिलाया जाता था और आज दिन तक ये प्रथा हम कहें यूं ही बरकरार है। तो बारिश एक तरफ, ठंड एक तरफ और यहाँ आने का जुनून एक तरफ, सही समय पर पहुँचकर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी है। इससे बड़ी खुशी आज के दिन मुझे और कोई नहीं हो सकती। श्रोताओं इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। कार्यक्रम में बातें भी हो रही हैं और गीत आपको सुनवा रहे हैं हम प्यारे प्यारे से। आइए आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं विद्यार्थी जीवन के ऊपर आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आपके साथ रूबरू हुए थे और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फेसबुक पेज पर आने की हमारी जो ये कोशिश थी कुछ समय पहले एक छोटी सी हम कह सकते हैं कोशिश या छोटा सा एक मन में आया हमारी टीम के जो सदस्य हैं उनके कि इस तरह से कोशिश की जाए और ये कोशिश हमारे श्रोताओं को हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी लगेगी इतनी पसंद आएगी हमने इस बात के बारे में सोचा नहीं था। अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि और श्रोताओं का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि हमारे द्वारा फेसबुक पर जो आपके साथ हम रूबरू होते हैं हमारी जो भी बातचीत होती है फेसबुक पेज पर लाइव आना उसे हमारे दर्शकों द्वारा सराहा जा रहा है। इंदी अपनी गप्पा कार्यक्रम आप सभी जानते हैं और ये कार्यक्रम जो है ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। सचिन कपूर जी इस कार्यक्रम को होस्ट करते हैं। गद्याली में बातचीत होती है। जी हाँ श्रोताओं बिल्कुल इंदी अपनी गादी भाषा ततिंदर गल बात करते ना है सचिन कपूर सी ते गप्पा शप्पा भी लंदन फोन ना अंदर आ है सचिन कपूर ही ते अपना जड़ा हाल चाल आस पड़ोस री गल्ला सो भी साझा करते हैं ते सचिन रेक वीडियो जतियो की माणू रा तुम दे श्रोता गण रा बड़ा ज़्यादा प्यार मुड़ोरता 45 जा रहा हूँ ऊपर ऊपर ततियो इन जड़े दर्शक इन सो एरी चुके न अते अल्ली भी एर उड़ते ना सिर्फ सचिन कपूर री वीडियो बल्कि असुहाई जड़े नाचीज इन छोटे मोटे तिंजा भी एर उड़ते तू है त्यारी भी वीडियो पसंद कर उड़ते बाकी इन टीम रे जड़े बाकी मेंबर इन तिंजा भी तू एर उड़ते पसंद कर उड़ते बड़ी अच्छी गल आ। और श्रोताओ अब मैं अपनी गदयाली से स्विच करूंगी हिंदी की और हमारे जो हिंदी के कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला गुड इवनिंग धर्मशाला या हम और भी बड़े अच्छे अच्छे कोशिश रहती है हमारी कि अच्छे अच्छे लोगों को आपके साथ रूबरू करवाएं। उनमें डॉक्टर्स के साथ हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं या कोई कलाकार होते हैं उनके साथ किए गए हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं उनको भी आप लोग सराहते हैं उन्हें अपना प्यार देते हैं और समय समय पर लोग अपनी जो सलाह है मशवरा है वो भी देते हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जब तक किसी काम को हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें क्या कमी रह गई है तब तक हम उस काम को और अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि मेरे काम में अगर कोई कमी निकलती है तो मैं मुँह मसोस कर बैठ जाऊँ या गुस्सा कर लूँ। आप को पूरा हक है हमें ये सुझाव देने का कि हम और किस तरह से अपने कार्यक्रमों को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप फेसबुक पे हमें कमेंट कर सकते हैं हमारा स्टूडियो का जो नंबर है उसमें भी आप अपने सुझाव जो हैं वो दे सकते हैं और समय समय पर हमारे जो श्रोता हमें सुझाव देते हैं उस पर हम अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा जो कहा जाता है उसे हम ठीक कर पाएँ। श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम में अब लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, विश्व छात्र दिवस आज हम मना रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष पर आज का ये दिन जो है वो मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक अंतरिक्ष अभियंता, वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रीय नेता थे। अंतरिक्ष अनुसंधान, मिसाइल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने भारत के प्रति उनके अमिट योगदान को आकार दिया। बात करें उनके प्रारंभिक जीवन की, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। कलाम ने 1960 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यभार संभाला और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में चले गए। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास का नेतृत्व किया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाई। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में उनके योगदान ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। श्रोताओं, अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में हम जितना भी बताएं उतना कम है। फिलहाल अब लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर। अब्दुल कलाम जी के जीवन और उनके द्वारा किए गए देश के प्रति कार्य और समर्पण के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल अपनी बातों को मैं देती हूँ विराम, लिए चलती हूँ आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवा रही हूँ। हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत है और ये फिल्म 90 के दशक की वो सुपरहिट फिल्म है जिसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और इसके गीतों की बात करें तो इसके गीतों का भी एक अपना अलग ही मज़ा, एक अलग ही रास्ता। तो हम दिल दे चुके सनम फिल्म का टाइटल सॉन्ग आप सभी के लिए, आप सभी के रेडियो सेट्स पर एंजॉय कीजिए और बने रहिए यूं ही 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। अभी आप गीत सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। जी हाँ श्रोताओं, हम दिल दे चुके सनम 1999 की वो फिल्म जिसके बारे में गीत से पहले भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था। इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो इसकी कहानी से आप रूबरू होंगे, और अगर नहीं देखा तो इस फिल्म की कहानी इन शॉर्ट आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं की। एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है ऐश्वर्या राय और सलमान खान की। और फिल्म शुरू होती है नंदिनी ऐश्वर्या राय और सलमान खान के प्यार से, उन्हें आपस में प्यार हो जाता है। संगीत सीखने के लिए सलमान खान ऐश्वर्या राय के पिताजी के पास आते हैं, और परिवार की जो हमारे नियम कायदे कानून होते हैं उसके हिसाब से नंदिनी के पिता को जब पता चलता है कि ऐश्वर्या राय सलमान खान के साथ प्रेम में पड़ गई है, तो वो समीर को यानी सलमान खान को अपने घर से निकाल देते हैं, और समाज में उनके प्यार की चर्चा ना हो इस बात को दबाने के लिए नंदिनी की शादी वो एक समझदार वकील के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद भी ऐश्वर्या राय सलमान खान को अपने दिल से नहीं निकाल पाती और अपने पति वनराज को वो स्वीकार नहीं कर पाती। जब उनके पति को पता चलता है कि नंदिनी के दिल में किसी और का प्रेम है तो वो बिना कुछ कहे नंदिनी को उसका प्यार दिलवाने के लिए आतुर हो जाता है। उसे लगता है कि दो प्रेमियों को अलग करना बहुत गलत है और वहीं दो प्रेमियों को मिलवाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है, इसलिए वो नंदिनी को लेकर के सलमान खान के साथ मिलवाने के लिए जब घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद जितना रास्ता वो तय करते हैं नवविवाहित पति पत्नी, उस दौरान उनके साथ जो भी उनका व्यवहार रहता है, जिस तरह से वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, और नंदिनी जब फाइनली सलमान खान के पास पहुंचती है तो उसका पति उसे अलविदा कहता है उसके पास छोड़ करके। उसे लगता है कि फाइनली मैंने दो प्रेम करने वालों को मिला दिया है, लेकिन उसी वक्त नंदिनी को एहसास होता है, जो थोड़ा सा समय उसने अपने पति के साथ बिताया होता है उसमें उसे एहसास हो गया होता है कि उसका सच्चा और असली जीवन साथी वही है जिसके साथ उसकी शादी हुई है। इसलिए नंदिनी उस समय समीर को छोड़कर वापस आती है अपने पति के पास, और हमेशा हमेशा के लिए वो दोनों पति पत्नी फिर साथ रहते हैं। तो इस फिल्म की कहानी का सार यही है श्रोताओं कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि त्याग और सही जीवन साथी को समझना भी है। और कहते हैं जोड़ियां ऊपर बनती हैं, और जिस व्यक्ति के साथ हमारी शादी हो गई होती है उसके प्रति त्याग समर्पण हमारे अंदर है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। यही इस फिल्म का सार भी है श्रोताओं, और मेरा भी यही कहना है कि अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहें, वफादार रहें, तभी आप वैवाहिक जीवन का भी सुख उठा पाएंगे। और अब हम कार्यक्रम में उठाते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का सुख। आपसे बातें ही करते रहेंगे तो आप कहेंगे कि लो जी बातें ही होती रहती हैं, मनोरंजन नहीं होता। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।
1: कैमरा फुल फ्रेम है अंदर।
0: श्रोता आज है 15 अक्टूबर और हम बात कर रहे हैं आज विद्यार्थी दिवस के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज का जो ये दिन है वो मनाया जाता है और कार्यक्रम में हम गीत से पहले बात भी कर रहे थे हमारे राष्ट्रपति जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बने और 25 जुलाई 2007 तक वे इस पद पर रहे। जनता के राष्ट्रपति के रूप में व्यापक रूप से जाने वाले उन्होंने छात्रों और युवाओं के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा। श्रोताओं बात करें इनके पुरस्कार और सम्मान की। 1997 में उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। 1998 में कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ भूपति राजू सोमा राजू के साथ मिलकर कम लागत वाला कलाम राजू स्टेंट विकसित किया। 2012 में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कलाम राजू टैबलेट डिजाइन की। उनकी पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्राइटेड माइंड्स शामिल हैं। उन्होंने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से भारत को ज्ञान आधारित विकसित राष्ट्र में बदलने की वकालत की। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम शिक्षण कार्य में लौट आए और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय वे गिर पड़े और 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो श्रोताओं ये थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास खास बातें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी हुई बातें, उनके जो आदर्श हैं उनको अपना करके कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और साथ ही साथ सादगी भरे जीवन को जीने की भी प्रेरणा उन्होंने दी। सादगी में रह कर के ज्ञान अर्जित करना और अपने देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना कोई सीखे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से सीखे। श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब लिए चलते हैं आपको फिर से कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सुन रहे थे, कहने वाले हैं अब हम, क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है श्रोताओं इस कार्यक्रम का और आपसे विदा भी लेंगे, चलते चलते गीत भी सुनाएंगे और यही कहेंगे कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी में हमेशा विद्यार्थी बने रहिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
18: अरे ललक, तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणिया करती है। शादी मतलब अजी सुनते हो, भैरे होगी हो क्या, तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: घूर क्या रहे हो? अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे इतना मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भैरे होगी हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: जल जीवन मिशन एपिसोड 5, नल भी चले जल भी बचे।
0: जल संरक्षण, जल स्रोत की सुरक्षा और जल योजना का संचालन एवं रखरखाव।
1: मुख्य संदेश, हर घर जल की असली सफलता तभी है जब स्रोत सुरक्षित रहे, पानी बचे और गांव अपनी जल योजना को मिलकर संभाले।
0: तीसरे एपिसोड में जल जीवन मिशन का एक व्यापक परिचय दिया गया था, जिसमें सुनने वालों को इसके मुख्य पहलुओं जैसे गांव स्तर की संस्थाएं, समुदाय की भागीदारी और जिम्मेदारी, संचालन और रखरखाव, पानी की गुणवत्ता, जल अर्पण, जल उत्सव और अन्य पहलुओं के बारे में बताया गया था। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में इन पहलुओं को दोबारा समझाने के बजाय बातचीत को JJM को समझने से आगे बढ़ाकर समुदाय के स्तर पर इसके नतीजों को बनाए रखने की ओर ले जाना चाहिए। इसमें सुनने वालों को अगले जरूरी सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब जब हमारे घरों तक नल का पानी पहुंच गया है तो हमें मिलकर क्या करना चाहिए ताकि पानी मिलता रहे, पानी का स्रोत टिकाऊ बना रहे और गाँव की जल आपूर्ति व्यवस्था आने वाले कई सालों तक ठीक से काम करती रहे।
1: आज पानी है लेकिन

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: अरे सूजन जल्दी आओ, पानी आ गया।
1: आ रहा हूँ, लेकिन इतनी खुश क्यों हो? अब तो हमारे गांव में नल से पानी आना कोई बड़ी बात तो नहीं?
0: नई बात नहीं है, पर अच्छी बात की खुशी रोज भी मनाई जा सकती है।
1: अरे बाल्टी तो भर गई, नल बंद करो।
0: हाँ, अरे ये बंद ही नहीं हो रहा।
2: तो बहने दो ना।
0: ये आवाज
1: और कौन? दूषिता।
2: बिल्कुल, पानी आ रहा है, बाल्टी भर गई है, थोड़ा बाहर बह गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा?
1: पहाड़ नहीं दूषिका, लेकिन अगर हर घर यही सोचे तो पानी जरूर कम पड़ जाएगा।
2: अरे वाह, इतना पानी धरती पर है, इतनी बारिश होती है और तुम तो दो चार बाल्टी के पीछे परेशान हो।
0: सूजन, इसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक सवाल आया।
1: पूछो।
0: हम हमेशा कहते हैं पानी बचाओ, लेकिन हमारे नल में पानी आखिर आता कहाँ से है?
1: बस आज की कहानी यहीं से शुरू होती है, घर में लगे नल से नहीं, उस जगह से जहाँ से हमारे गांव का पानी आता है,
0: यानी कि हमारा जल स्रोत।
1: बिल्कुल।
2: उफ, अब ये दोनों मुझे कुएं, तालाब और बोरवेल घुमाएंगे।
1: और तुम्हें भी चलना पड़ेगा।
0: सूजन, हमारे गांव में पानी बोरवेल से आता है, लेकिन कहीं कुआं है, कहीं झरना, कहीं नदी, कहीं तालाब और कहीं दूर के जल स्रोत से पानी आता है।
1: बिल्कुल, जल योजना अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात हर जगह समान है, पानी का स्रोत सुरक्षित रहेगा तभी नल से पानी लंबे समय तक आता रहेगा।
2: अरे नीचे का पानी तो धरती का है, निकालते रहो, खत्म थोड़े ही होगा।
1: यही सोच सबसे बड़ी भूल है, हम धरती से पानी निकालते जाएं और उसे वापस जमीन में जाने का मौका ही न दें तो जल स्तर नीचे ही जाएगा।
0: मतलब बारिश का पानी सिर्फ बहकर निकल न जाए, उसका कुछ हिस्सा जमीन में भी पहुंचे।
1: हाँ, और जहाँ जरूरत हो गांव मिलकर वर्षा जल को रोकने, जमीन में उतरने और अपने स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का उपाय कर सकता है।
0: जैसे तालाब की देखभाल, जल स्रोत के आसपास सफाई, वर्षा जल संचयन, सोखता गड्ढे और स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भूजल पुनर्भरण के काम।
1: बिल्कुल, लेकिन याद रहे हर गांव का पानी अलग है, इसलिए उपाय भी स्थानीय जरूरतों और तकनीकी सलाह के अनुसार होंगे।
2: और मैं कहती हूँ बारिश आएगी तो सब अपने आप भर जाएगा, क्यों मेहनत करना?
0: और अगर बारिश कम हुई
2: तो?
0: और अगर पानी जमीन में जाने के बजाय बह गया
2: तो?
1: और अगर हमने जितना पानी निकाला उतना वापस जमीन में पहुंचा ही नहीं?
2: अच्छा अच्छा, समझ गई। सवालों की मशीन बंद करो।
0: लेकिन सूजल, सिर्फ स्रोत में पानी होना ही काफी है?
1: नहीं, स्रोत को साफ और सुरक्षित रखना भी जरूरी है।
0: यानी उसके आसपास कूड़ा नहीं, गंदा पानी नहीं, ऐसी गतिविधि नहीं जिससे पानी दूषित होने का खतरा हो?
1: बिल्कुल, और एक और जरूरी बात, गांव को ये समझना होगा कि उसके पास पानी कितना है और जरूरत कितनी है।
0: अच्छा, जैसे घर में हिसाब रखते हैं कि आमदनी कितनी और खर्चा कितना?
1: ठीक वैसे ही पानी का भी हिसाब, कितना पानी उपलब्ध है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, गर्मी में क्या स्थिति रहती है, बारिश के बाद स्रोतों में क्या बदलाव आए हैं।
0: मतलब जितना पानी है उसी हिसाब से पानी का उपयोग
1: और आने वाले मौसम की तैयारी भी।

दोस्तों अब चलते हैं हमारे जो गांव में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है कमेटीज बनाई जाती हैं, समिति के मेंबर्स जो जिन्हें मेंबर बनाया जाता है उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी प्रयास जो किए जा रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आइए आप सभी को जागरूक करते हैं, लेकर चलते हैं।

0: नमस्कार सर, रेडियो गुंजन धर्मशाला से मैं रुचिका बात कर रही हूँ।
1: जी रुचिका जी नमस्कार।
0: जी तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं सबसे पहले ये बताइए।
1: मैं हूँ बल्ला जदरंग से का रहने वाला हूँ और मौजूदा पंचायत में प्रधान हूँ।
0: जी तो सर आपको जितना मुझे जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आप जो है जल जीवन मिशन कमेटी के अंडर जो है वो मेंबर है ना।
1: जी जी जी जी
0: जी तो पहले थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताइए कि जो जैसे जल जीवन मिशन के अंडर का रोल यही है कि हर घर में नल होना जो है वो बेहद जरूरी है और प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड चलाए जा रहे हैं। तो आपके गांव की अगर हम बात करें तो किस तरह से हर घर में जो है वो नल है या अभी भी नहीं है।
1: जी जी मैडम जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, पर इसमें ये है कि मेरे गांव में मैक्सिमम 92% जो जल जीवन के मिशन के तहत नल के लगे हुए हैं और कुछ 8% जो बचते हैं जो अभी मेरे विभाग से हाल ही बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि भाई बड़ी जल्दी वो भी लगा दिए जाएंगे।
0: जी
1: जी जी
0: जी तो आप मतलब कमेटी के मेंबर होने के अंडर अगर हम बात करें तो जैसे कमेटी के अंडर जो और भी मेंबर्स आपके साथ हैं या आप अकेले ही हैं गांव में।
1: जी जी नहीं जी मैं नहीं हूँ, मेरे साथ और भी काफी मेंबर हैं, औरतें भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, युवा भी हैं, सभी है इस कमेटी में।
0: तो क्या रोल रहता है सर आपका गाँव के अंडर।
1: कुछ जैसे ही हमारा यही रोल रहता है कि हम चाहते हैं कि मेरे गांव को स्वच्छ जल मिले और टाइमली हर टाइमली इनको पानी मिलता रहे और जैसे भी हम विभाग से टाई अप करके जैसे भी हमें जरूरत आती है विभाग भी हमारी हेल्प करता है उसमें और हम भी विभाग के पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं इसमें।
0: जी तो सर अगर हम जल स्रोत की बात करें तो मेन जो है आपके गांव में पानी आता कहाँ से है, मतलब क्या स्रोत है उसका, क्या साधन है आने का।
1: जी जी मैम जी ऐसे तो हमारा जो मेन सोर्स है हमारा एक इक्कू से है, हमारा जो इक्कू खाडा पी है उससे आता है एक हमारा सोर्स और बीच में हमारा एक सोर्स है उसको बोलते हैं हम नॉन कुट, एक वो हमारा वहां से चलता है ये सोर्स। तो जैसे जैसे हमारी गर्मियां बढ़ती जाती हैं जो हमारा नॉन कुट सोर्स है वो कम हो जाता है और वो हालांकि लास्ट में वो बंद भी हो जाता है और एक कुछ और हमारा जो है वो हमारा गांव को पूरा पानी पे करता है और इसके बीच में हमारे हेडपम्प भी लगे हुए हैं, मतलब 7 से 8 हमारे हेडपम्प भी लगे हैं वो भी हमारा पानी की पूर्ति करते हैं वो।
0: जी तो मतलब गर्मियों सर्दियों में जो है कभी भी पानी की कमी नहीं होती है।
1: ऐसे तो कहा कभी कभार जैसे हमारा ये खड का जो एक का प्रोजेक्ट है अगर नाले में पानी बढ़ जाए तो कई बार बंद भी हो जाता है और ऐसे कमी कम आती है।
0: जी
1: जी जी
0: तो और इसको मतलब कि स्वच्छ रखने के लिए जो है और आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पानी को मतलब सभी तक पहुंचाने के लिए।
1: जी बिल्कुल हम ऐसे हैं जैसे टाइमली टाइम ये विभाग से भी हम इसका टेस्टिंग करवाते हैं और इसमें जैसे भी जो भी कीटनाशक सॉरी इसमें जो भी जैसे ब्लीचिंग पाउडर है ये जो भी है हम टाइमली डलवाते रहते हैं और एक परेशानी है हमारे ऐसे है जैसे हमारे पहले हमारी पॉपुलेशन कम थी
0: जी।
1: तो उसी हिसाब से हमारे जो टैंक बने थे
0: जी।
1: तो अभी ये है कि हमारे दिक्कत आ रही है कि अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन प्रतिदिन हमारी जो दिक्कत बढ़ रही है तो उसके हिसाब जो हमारे जो है टैंक है वो छोटे पड़ रहे हैं तो मेरी एक विभाग से एक गुजारिश रहेगी कि वो इस ओर एक ध्यान दे जो हमारे पिछले जो बने हुए टैंक है उनको सरकार बड़ा करने की सोचे तो मेरे गांव की जो है समस्या पानी की बहुत काफी हद तक पूरी हो।

0: सूजन, ये मोटर आज कुछ अलग आवाज नहीं कर रही।
1: चल तो रही है, चलने दो।
2: यही तो तुम्हारा तरीका है दुशिका, जब तक पूरी तरह खराब ना हो जाए कुछ मत करो।
1: बिल्कुल, खराब होगी तो ठीक करा लेना।
2: और अगर गर्मी के बीच मोटर बंद हो गई
0: तो पूरे गांव के पानी की सप्लाई रुक सकती है।
2: इसलिए जल योजना को देखभाल बीमारी के इलाज जैसी नहीं, सेहत की देखभाल जैसी होनी चाहिए।
0: मतलब खराब होने का इंतजार नहीं, पहले से देखभाल।
2: यही है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी निवारक रख रखाव। मतलब खराबी होने का इंतजार नहीं, बल्कि समय रहते देखभाल करना, खराबी से पहले संभालना।
1: अब गांव वाले इंजीनियर भी बनेंगे?
2: नहीं, हर काम गांव वाले खुद नहीं करेंगे, लेकिन गांव इतना जरूर कर सकता है कि छोटी समस्या को बड़ी समस्या बनने से पहले पहचान लें।
0: जैसे
2: नल टपक रहा है, पाइप में लीकेज दिख रहा है, टंकी से पानी बह रहा है, वॉल ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी मोहल्ले या आखिरी घर तक पानी कम पहुंच रहा है, मोटर की आवाज बदली है, या पानी के रंग, स्वाद या गंध में बदलाव दिख रहा है, तो इंतजार नहीं, सूचना और कार्रवाई।
0: और इसके लिए पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति और प्रशिक्षित वाटर सप्लाई ऑपरेटर मिलकर व्यवस्था संभाले।
2: हाँ, और जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता भी ली जाए।
1: लेकिन एक बात बताओ, जब सरकार ने योजना बनाई है तो गांव वाले पैसे क्यों दें?
0: सुजल, ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं।
2: और पूछना भी चाहिए, पानी प्रकृति की देन है, लेकिन पानी का स्रोत से घर तक पहुंचने में मोटर चलती है, बिजली लगती है, ऑपरेटर काम करता है, पाइप और वाल की मरम्मत होती है,
0: यानी जल सेवा को नियमित चलाने का खर्च होता है।
2: हाँ, गांव में तय व्यवस्था के अनुसार समय पर जल सेवा शुल्क देने भी अच्छी जल सेवा बनाए रखने में हमारी भागीदारी है।
1: मैं तो नहीं दूंगी, मेरा एक महीना नहीं देने से क्या होगा?
2: यही तो तुम्हारा पसंदीदा वाक्य है, मेरे अकेले से क्या होगा।
0: लेकिन अगर पूरा गांव यही कह दे

0: सच बताओ सुजल, यही बात हम कई जगह कहते हैं। एक नल टपकने से क्या होगा, एक बाल्टी बहने से क्या होगा, मेरे अकेले जल सेवा शुल्क ना देने से क्या होगा, मेरे अकेले जल स्रोत की देखभाल ना करने से क्या होगा।
1: और इसी क्या होगा में छोटी छोटी लापरवाहियां जुटती जाती हैं।
2: वाह स्वच्छिका, अब आई ना मेरी लाइन पर।
0: पूरी बात तो सुनो, एक आदमी की लापरवाही छोटी लग सकती है, लेकिन पूरे गांव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है।
1: एक घर पानी बचाए, दूसरा लीकेज बताए, कोई जल स्रोत की रक्षा करे, कोई समय पर सेवा शुल्क दे, पानी सीमित हिसाब रखे, पंचायत समय पर समीक्षा करे, ऑपरेटर योजना की नियमित देखभाल करे और ग्राम सभा मिलकर पूछे हमारे गांव की जल सेवा कैसी चल रही है।
0: तभी नल सिर्फ आज नहीं,
1: कल भी चलेगा,
0: गर्मी में भी
1: और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।
0: तो आज रेडियो सुन रहे हर गांव से हम 5 सवाल पूछे।
1: पूछो।
0: क्या हमें पता है कि हमारे नल का पानी किस स्रोत से आता है?
1: क्या हम अपने जल स्रोत को साफ, सुरक्षित और जीवित रखने के लिए कुछ कर रहे हैं?
0: क्या गांव में कहीं पानी बेवजह बह रहा है या लीकेज है?
1: क्या हमारी जल योजना की मोटर, टैंकी, पाइपलाइन और बॉल की समय पर देखभाल हो रही है?
0: और 5वां सवाल, अगर कल पानी की सप्लाई में समस्या आए तो क्या हमें पता है कि किसे बताना है और क्या करना है?
2: बस बस, ये सवाल हर गांव ने पूछ लिए तो फिर मेरा क्या होगा?
1: वही होगा जो होना चाहिए,
0: तुम्हारी छुट्टी।
1: दोस्तों, आज कार्यक्रम सुनकर सिर्फ पानी बचाना चाहिए मत कहिए, आज ही एक काम कीजिए,
0: अपने परिवार के साथ पता कीजिए आपके घर के नल में आने वाला पानी आता कहाँ से है,
1: और अगली ग्राम सभा या पानी समिति की बैठक में एक सवाल जरूर पूछिए, हमारा जल स्रोत आने वाले 5-10 सालों तक सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारा गांव क्या कर रहा है।
0: और अपनी गली में एक बार देखिए, कहीं नल टपक तो नहीं रहा, कहीं पाइप से पानी बह तो नहीं रहा, कहीं टंकी से पानी बेकार तो नहीं जा रहा।
2: अरे रेडियो बंद करो, वरना लोग सच में देखने निकल पड़ेंगे।
1: यही तो चाहते हैं हम, स्रोत बचेगा
0: तो पानी रहेगा,
1: पानी बचेगा
0: तो हर घर जल चलेगा,
3: और योजना संभलेगी तो गांव का कल सुरक्षित रहेगा,
2: और मैं
3: तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं।
4: चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, सच सुजल गांव की एक अनोखी कहानी।
5: हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए, लीकेज रोकें, पानी बचाएं। क्या आप जानते हैं, मामूली लीकेज से ही हर महीने 1,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि एक नल से हर मिनट 45 बूंद पानी टपकता है तो 3 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी बह जाता है। पानी की हर बूंद मायने रखती है, जल बचाएं, भविष्य बनाएं।
6: स्वच्छ सुजल यही है भारत का नारा न्यारा।
7: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
0: इस बार हमारा सवाल है, आपके गांव के नल में पानी किस जल स्रोत से आता है और उस स्रोत को बचाने के लिए आपके गांव में क्या किया जा रहा है।
1: हमें चिट्ठी, संदेश या अपने कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जरूर बताएं। आपके गांव का अच्छा काम हम दूसरे गांव तक भी पहुंचाएंगे,
0: क्योंकि एक गांव का अच्छा काम
1: दूसरे गांव का रास्ता बन सकता है।
0: तो अब दीजिए हम दोनों को इजाज़त।
1: नमस्कार।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। श्री शाह सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन लोगों के पुनरुद्धार में शामिल है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31 तीन 2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया है कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से था, जो अब बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने राज्यों को देश में डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद के लिए डेटा सेंटर इवेल्यूशन फ्रेमवर्क जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हेली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित IUKFP बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई में आयोजित CII बिग पिक्चर सम्मेलन में श्री कुमार ने बौद्धिक संपदा को मजबूत करने, सतत राजस्व सुनिश्चित करने, अनुशासित निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री कुमार ने बताया कि वेब्स का अगला संस्करण अक्टूबर 2027 में मुंबई में आयोजित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
18: अरे ललक, तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणिया करती है। शादी मतलब अजी सुनते हो, भैरे होगी हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे है, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तो सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग अपना।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे भादू शेरों का शिकार हिरणिया करती है। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे है, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानो से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्स पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तुम माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है। इसी स्वागत कने तुहां सारे जुड़ चुके होने न कने जेड़ा श्रोता है न सभी जरूर कॉल करा दे ने तिना दी जेड़ा कॉल है सभी यहाँ जरूर लैनी है कने तिना कने गलबात भी जरूर करनी है तो कर दे ना श्रोता कने गलबात से कुथु ते बोला दे ना कने तिना दा ना के हेलो हेलो हेलो जी नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: हां जी बढ़िया
0: जी क्या काम कार तुहां छेड़िया क्या करा दी
1: बाकी रेडियो गुंजन सुना दे बरखा नहीं यो
0: जी अच्छा रेडियो गुंजन सुना दे कने बरखा इस टाइम मुझे लगा था रुकी यो
1: रुकी आज जी
0: जी जी ता तो कुछ दे रहने वाले न कने अपना प्यारा दिया ना भी जरूर दसी दिया जी
1: मैं ना बंदना जी सिद्धबाड़ी ते रहने वाले
0: न जी अच्छा बंदना जी सिद्धबाड़ी ते बोला दे
1: जी
0: जी वंदना जी आज क्या काम कार तुहां छेड़िया
1: बस इन नहीं कुछ नहीं जानवर दिख रही थी
0: जी अच्छा जी जी ता वंदना जी आज कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: उच्चिया पहाड़ा भालिए देवीए आज साड़ा भाग दे आराम आलो भैया
0: जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचांदे जी जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा जी तो श्रोताओं तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ सकदे कन्ने हां कन्ने गलबात जेड़े से जरूर करी सकदे गलबात करने वास्ते जेड़ा हां दा नंबर है से स्टूडियो दा जेड़ा नंबर है से तुह तक पहुंचाइंदे न नंबर है 701-8117091 नंबर तुह तक पहुँचाई तो है कने इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम का जेड़ा आगाज़ है से कर दे न इस गीत कने तुह सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला

0: बाला तुम्हा सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा दी ना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तुम्हा सारे ही सुनिया एक गीत शुरुआत। तो जरूर अहां अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत ऐसे इस गीत कन्ने कीती है। कन्ने तुम्हां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकदे, कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़े से करी सकदे। तो श्रोताओ गलबात जेड़े से करने वास्ते एक बारी फिर ते तुहां तक जेड़ा नंबर है से पहुँचाई दे ना, क्योंकि नंबर तुहां तक पुजी होगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा से जरूर करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। नंबर फिर ते तुहां तक पहुँचाई ते कने बाकी जेड़ा काम है से तुहां ते। तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ा, कने अपनी जेड़ा गलबात है से जरूर करा। तो श्रोताओ अगले जेड़ा श्रोता है ना से यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना, कर दें तीना कन्ने गलबात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना? हेलो जी, मेरी आवाज जेड़े से तुहां तक पुजा दी कि नहीं पुजा दी? हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, मेरी आवाज जेड़े से तुहां तक पुजा दी कि नहीं पुजा दी?
1: हाँ जी हाँ जी पुजा दी पुजा दी।
0: जी जी जी, तुहां कुथों ते बोला दे कने तुहां दा नां की है जी?
1: मैं बिलासपुर तो बिलासपुर ते।
0: जी बिलासपुर ते बोला दे।
1: जी जी वीर सिंह नाम मेरे जी।
0: जी ता क्या हाल चाल है जी बिलासपुर आले अंदे?
1: बहुत बढ़िया जी।
0: जी ता क्या काम कार छेड़े तो हां क्या करा दे?
1: काम कार कुछ
0: नहीं
1: है, जी
0: जी बरखा लगी हो बिलासपुर की नहीं लगी हो? हेलो
1: हाँ सुबह के लगी थी
0: जी, तो हिंदी आवाज कुछ क्लियर नहीं हो दी जी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: मेरे लगी थी पर खराब बात थी।
0: श्रोताओं कोल जेड़ा है से जरूर डिस्कनेक्टेड होई हो ता हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाते हैं ना, क्योंकि सफर जेड़ा है से चले रहना है। कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ सकते, कने हाँ कन्ने गलबात जेड़ा है से जरूर करी सकते। तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़िया, कने हाँ कन्ने गलबात जेड़ा है से जरूर करा। अगले जेड़ा श्रोता ने सभी जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हैं ना, कर दें तिना कन्ने गलबात। हेलो हेलो हेलो हेलो श्रोताओं कोल जेड़े से जरूर डिसकनेक्टेड हो शायद नेटवर्क इशू होना है या तिदिया वजह ने जेड़े से कॉल जेड़े से डिसकनेक्टेड हो। तो जरूर अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने कोशिश करते न कि तुहंदी जेड़ा कॉल है से जरूर अहां लैन, कने जेड़ा नेटवर्क इशू है तो सद चले ही रहता। तो इसी कन्ने अहां जेड़ा शुरुआत है से प्यारे दे गीत कन्ने कीती है। कन्ने मौसम दी ओर अगर अहां नज़र दौड़ाते न तो कुथी ना कुथी मौसम जेड़ा है से बड़ा ही बेईमान है, क्योंकि मौसम दा जेड़ा कोई भरोसा नहीं है। कन्ने जितने भी श्रोता न से जरूर अपने कामकार पर लगे होने न, वैसे भी धाना दा जेड़ा काम मैं से पे है तो कुथी ना कुथी तिना जो मौसम दी वजह ने परेशानी जेड़ा है से उठानी पई होनी है, क्योंकि मौसम ने तो हाँ लड़ी नहीं सकते पर मौसम के अनुसार चलना भी जरूरी है। तो इसी कन्ने अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचाते न।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दशो तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दे गीत प्यारी दे फरमाइश फिर ते हाँ वापिस आई होना अपनी गलबात उपर कने तो हाँ सारे भी गलबात कने भी जुड़ी होने न कने अपने जेड़ा काम कार हैं सभी जरूर करा दे होने न कने आजकने दिने दी क्या खासियत है या आजकना दिन कयो खास है तिदे ऊपर भी नज़र जड़े से दौड़ाना बनता है। 15 अक्टूबर 2026 दी यहाँ गल करिए ता आज यहाँ जेड़ा मुख्य जेड़ा हाँ बोली सकते दिवस जड़े से आज यहाँ बना देन विश्व छात्र दिवस तो जरूर इदे ऊपर गलबात करनी है। तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने यहाँ कन्ने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। इसी कन्ने हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते कन्ने तुहां तक अगली जेड़ा फर

0: फरमाइश है से पहुँचाते हैं न। अगली फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुआ कोठियाँ जलोड़ ते कन्ने तिना दा ना वे सुनील जी तो ज़रूर सुनील जी तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचानी है पर अगले जिड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर लेंदे न गल बात। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपको?
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, आवाज़ नहीं आ रही क्या?
0: जी जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी हाँ जी बड़ी, आप सुनाओ जी।
0: जी यहाँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: चलो ठीक ही चाहिए सब।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा ना क्या है जी? हेलो हेलो
1: हेलो
0: श्रोताओं कॉल जिहड़ा है से जरूर डिसकनैक्टेड होई हो तां तुहां जो लेकर चलदे न फरमाइश दी और सुनदे नहीं सा प्यारे दी आ फरमाइशा जो।

0: तो सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा दे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न सहा कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने कल बात। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा। जी मेरी आवाज़ जिहड़ी है से तुहां तक क्लियर पुजा दी जी?
1: हाँ जी हाँ जी क्लियर हो गई
0: जी। जी कोई नेटवर्क इशू होना है ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी सही बार बार कटता जा रही है।
0: जी जी जी जी तो हाँ अपना परिचय जरूर दे दिया जी, कुछ दे रहने वाले न करने अपना नाम भी जरूर।
1: मैं बिलासपुर बिलासपुर रहने वाला जी।
0: जी बिलासपुर ते बोला दे तो हाँ
1: जी जी वीर सिंह नाम है मेरा जी।
0: जी वीर सिंह जी
1: जी
0: जी तो वीर सिंह जी आज का जेड़ा दिन है सेक दिया की चलिया तो हाँ दा क्या काम कार छेड़िया तो हाँ?
1: काम कार कोई नहीं छेड़े जी, सवेरे बरखा लगी थी
0: जी। अच्छा बरखा लगी थी
1: बढ़िया
0: जी जी। तो इस टाइम कदे है मौसम?
1: इस टाइम बिल्कुल धूप लगी थी बढ़िया जी।
0: जी अच्छा धूप चमकवाई थी है ना जी?
1: हाँ जी धूप चमकी थी
0: जी जी। तो और खेती बाड़ी का क्या काम कार चल रहा तो हों?
1: खेती बाड़ी का बस जी बेले जी रहे खेती बाड़ी के।
0: जी अच्छा बेले हुई हो
1: बेले तां तू लाई दे ना सब खत्म कर दिया हो।
0: जी अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। तो वीर सिंह जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनने है कुंडे फरमाइश है तो हों दी
1: गाना सुनाई तो आज कच्चा वाला नींबू नींबू कने तोड़िया।
0: जी जी जरूर जी तो हों दी जेड़ा फरमाइश है से तो हों तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हों दा।
1: धन्यवाद जी धन्यवाद तुम्हारा भी धन्यवाद जी
0: जी। ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहा करने जुड़ सकते कने हाँ करने गलबात जिहड़े से जरूर करी सकते। अगले जिहड़ा श्रोता न सभी जरूर हाँ करने जुड़ चुके न कर दें तिना करने गलबात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम
0: जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी? तो हाँ कुछ दे रहने वाले न कने अपना नाम भी जरूर दसी दिया जी।
2: कांगड़ा दे बोला दे प्रकाश चंद
0: जी। कांगड़े ते प्रकाश चंद
2: जी।
0: ता प्रकाश जी कांगड़े वाले दे क्या हाल चाल है न, क्या काम कार छेड़िया जी तो हाँ?
2: दुकाना ने बैठे
0: जी। अच्छा दुकाना बैठे हो
2: जी।
0: ता कदे लगा था तुहां जो ये कार्यक्रम
2: कार्यक्रम तो बड़ा बढ़िया
0: जी। रोज ही सुनते
2: जी।
0: तो आज यहाँ जेड़ा खास दिवस बना दें 15 अक्टूबर जो विश्व छात्र दिवस ना जी।
2: अच्छा
0: जी जी। युवा जो किस तरीके ने यहाँ प्रेरणा जेड़े से दे सकते कने क्योंकि हर युवा मेहनत करता है अपनी जिंदगी च यही चाहता कि यहाँ सफलता दी ओर बढ़न ना जी। कने पेरेंट्स भी अपने बच्चें जो अच्छी शिक्षा भी दिंदे न अच्छे अच्छा जिहड़ा व्यवहार है सभी तिना तक पहुँचाते न जी। जी जी जी तो
2: नशा पत्ता भी जिहड़ा जिससे दूर जिम वगैरह अपनी स्टडी है
0: जी
2: कोई नई नई स्किल कोर्सेज अपने मनपसंद
0: जी जी
2: इस हिसाब से करना चाहिए
0: जी।
2: फिटनेस ध्यान देना चाहिए
0: जी
2: हिला खुला जी रे थोड़ा
0: जी जी
2: फोन कर दें तो फोन मेरा ये सही यूज करना सर
0: जी जी
2: फोन दे नहीं है कि आधार कुछ नहीं है
0: जी
2: पूरी गप्पा थी सब खेल सकते
0: जी जी। पर सही है ना कि यहाँ पर निर्भर करता कि यहाँ किस तरीके ने मोबाइल फोन का जेड़ा इस्तेमाल ऐसे कर दे ना जी।
2: हाँ जी
0: जी जी बड़ी अच्छी गल बात जेड़ा ऐसे तो हाँ रखी है कने आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनने जी।
2: गाना सुना रहे तो हाँ रांझी फिल्म का टाइटल सॉन्ग
0: जी। कुंडिया
2: रांझी फिल्म का टाइटल सॉन्ग
0: जी। एक बार फिर ते गाने दे जेड़ा मूवी जेड़ा तो हाँ टाइटल दसा दे ना कुंडिया जी।
2: रांझी फिल्म
0: जी जरूर जी कोशिश करते हैं तुहां तक तुहांदी जिहड़ा फरमाइश है पहुँचाने की ना जी। जी जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहांदा।
2: वेलकम
0: जी। तो श्रोताओं तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। गलबात अहां करा देना विश्व छात्र दिवस। हर साल 15 अक्टूबर जो जड़े से भारत के पूर्व राष्ट्रपति जड़ा महान विज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दी जड़ा जयंती पर जड़े से सम्मान देने वास्ते अहां ये दिन जड़े से अज बना देन। कनेसी कन्ने युवा दे जड़ा सपने न सपने जो पूरा करना या दिखना या किस तरीके ने अहां तिना पर मेहनत कर देन ते दे उपर जड़े से जागरूक होना भी जरूरी है। पर श्रोता जड़ा अहां कन्ने जुड़दे न तिना भी अपने जड़ा विचार हैं से बड़े प्यारे रखे कि नशे दी ओर जड़े से युवा ज़्यादातर जा देन या अहां दिखा देन। नशा जड़े से अहां दे परिवार जो भी अहां ये बोली सकते कि बर्बाद करींदे है। कनेसी कन्ने अहां दे सपने जो भी कनेसी कन्ने अहां दे जड़ा बाकी फैमिली मेंबर हैं कुथी ना कुथी नशा जड़े से अहां दी जिंदगी पर बड़ा ही गहरा जड़ा प्रभाव है से ज़रूर पाते है। तो इसी कन्ने अहां फिरी ते अगे बढ़ते हैं कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से अहां पहुँचा देन काजल जी तक कन्ने से रहने वाले न स्लेट गोदाम ते।

0: धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कने। इसी कने समय दी और नज़र दौड़ाइए तो 2:31 कार्यक्रम जो इं कने थोड़ा दिया जड़ा नज़र है से हाँ अपने लैपटॉप दी और भी दौड़ाते हैं क्योंकि कुछ जड़ा जानकारियाँ या अजकना जड़ा दिन है तो उपर गलबात करना भी जरूरी है। विश्व छात्र दिवस जड़ा से अज हाँ बना देन डॉक्टर कलाम जड़े से तिना दा छात्रां दे प्रति गहरा जड़ा रिश्ता है से हाँ बोली सकते। डॉक्टर कलाम जड़े से खुद जो हमेशा एक जड़ा शिक्षक कैसे मनते थे। राष्ट्रपति जड़ा पद छड़ने ते बाद जड़े से ना अध्यापक दा जड़ा रुख ऐसे जरूर लिया था कि ऐसी करने देश जड़ा मुख्य संस्थान थे तिथु पढ़ाना जड़े से शुरू किया था कने इसी कने युवा वास्ते जड़े से एक प्रेरणा दी जड़ा मसाल ऐसे जरूर बनिए थे क्योंकि युवा जड़े से देश दा भविष्य है। कने आज कने दौर दी गल करिए ता कुथी ना कुथी यहाँ मोबाइल फोन दी गल कर देन या नशे दी यहाँ गल कर देन या बाकी चीज़ां दी यहाँ गल करिए ता हर दिन यहाँ अपने समाज च या यहाँ अपने शहर च आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ जड़े से सुनते रहते न या यहाँ च जड़ा सहन शक्ति है से बिल्कुल कम है। कने ज़्यादातर युवा जड़ा है से नशे दी ओर जाते न। अगर तुहां नशा करना है तो पढ़ाई का नशा करा या तुहां जो कोई अच्छी चीज़ लगती है या तुहांदा ड्राइंग च ड्राइंग करना तुहां जो अच्छी लगती है या राइटिंग जड़ा है से यहाँ बोली सकते कि लिखना तुहां जो अच्छा लगता है या इसी करने गाना तुहां जो पसंद है क्योंकि हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंगी। कने अपने जड़ा शौक हैं तिना जो जरूर पूरा करा कने इसी कने अगर तुहां नशे दी तरफ जाते न तो कुथी ना कुथी खुद पर असर तो पौंदा ही है इसी कने फैमिली पर भी बड़ा ज़्यादा जड़ा असर है से दिखने जो मिलता है से तुहां सारे जो पता है क्योंकि माता पिता अपने बच्चे वास्ते हमेशा अच्छा जड़ा सोच है से रखते हैं पॉजिटिव सोच रखते हैं कि यहाँ के जड़ा बच्चे न से हमेशा तरक्की दी ओर जान। तो इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता है न से भी यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: ठीक ठाक बढ़िया। तुहां सुना
0: जी? यहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहां दा ना के जी?
1: हां नेड़े ते बोला दे जी। कनाडा ते
0: जी नेड़े ते ही है ना?
1: हां जी हां जी
0: जी जी। ता नेड़े दे श्रोता ना ता तोहे किदया लगदा कि पड़ोसी जी जेड़ा है से रेडियो स्टेशन है ना जी?
1: हां नेड़ा बढ़िया रहे हन जताई है बढ़िया बढ़िया गाने लगी रंदे और के
0: जी। कदी आए भी तुहां रेडियो स्टेशन?
1: नहीं नहीं नहीं आए कभी आए नहीं।
0: जी जी जी। ता गुंजन जड़े से तुहां सुनते रहंदे ना जी?
1: सुनते रहंदे प्यागा लगी अंदा के ना शामी तक सुनते रहंदे
0: जी। अच्छा प्यागा कितने बजे ऑन करिंदे तुहां?
1: प्यागा यंदा 7 बजे ऑन यंदा
0: जी। अच्छा 7 बजे
1: 7 बजे ऑन करिंदे के ना
0: जी?
1: संजय बजी अंदे 5 कभी 6 बजे अंदे
0: जी। वैसे तो तुहां इस जो रात दिन भी सुनी सकदे ना जी?
1: सहत है ना पढ़ूना
0: बेईमान अगर हां पुराने समय दी गल करिए तां काम जेड़े से बिल्कुल ज्यादा संयुक्त परिवार हुंदे थे ना जी। कने उस कम्मे करने दा भी अलग ही अंदाज हुंदा था। गीत सुनना पसंद करके
1: आज सुनाई दे तो हां मितू दा कोई गाना
0: जी अमित मितू दा कोई
1: नाम है तो है दसया नहीं अपना कने
0: जी दसी दिया ना भी जरूर
1: ना मेरा सुनील आली आली तीन या दो दिन पहले भी कितने हाँ फोन है
0: जी अच्छा अच्छा अच्छा सुनील जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी जरूर सुनील जी तो हम जेड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हम दा
1: ओके
0: जी दर्शो तो इसी कन्या हाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाते न कन्या वंदना जी तक हाँ ये फरमाइश पहुँचा देन

दर्शकों इसी कने तो हाँ सारे भजन इंजॉय किया उचिया पहाड़ा लया डेरा माँ शेरा वालिए तो जरूर अजकना जेड़ा नवरात्रि का जेड़ा पर्व है से तुह बड़े ही धूमधाम ने मनाते हैं कने अज पंजवा जेड़ा नवरात्र है उस जो तुह पूरी श्रद्धा भाव ने मनाते हैं कने अज पंजवा नवरात्रा कुछ माता जो समर्पित है से माता भी जरूर तुह तक पहुँचा देने स्कंद माता जी जी का जेड़ा अज नवरात्रा हाँ बना देने कने तुह भी पूरी श्रद्धा भाव कने अज कने दिने जो जरूर इंजॉय करा दे उन्हें अगली जेड़ा फरमाइश है से हाँ पहुँचा देने वीर सिंह जी तक से रहने वाले न बिलासपुर से

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कने इसी कने जिड़ा गीता दा सफर है फरमाइशां दा सफर है उस जो भी जरूर इंजॉय करा देना इसी कने इस टाइम जिड़ा तुहां गीत इंजॉय करा देना बालक खेल दाए नींबू आंदे हेठ तो जरूर ये गीत तो हाँ सारे जो ही पसंद आया होना है कन्या हाँ फिर ते अपनी जेड़ा गलबात है तिह उपर चल देन गलबात हाँ अज करा देन विश्व छात्र दिवस के बारे च जेड़ा युवा पीढ़ी है युवा पीढ़ी का तिना दे जीवन च क्या रोल है सफलता पाने वास्ते मेहनत करना भी जरूरी है पर आज ने दौर की अहाँ गल करिए से बिल्कुल कम है हाँ अपनी जिड़ा जिंदगी है से भाग दौड़ भरी बनाई लियो क्योंकि अहाँ ही सोच देना कि सिर्फ भाग दौड़ भरी जिंदगी जिड़ा से अहाँ बनाई लेंदे न कने हमेशा कुथी ना कुथी अहाँ अपने जो समय नहीं दे पाते न या जिड़ा माता पिता न तिना जो समय नहीं दे पाते न या अपनी फैमिली जो समय जिड़ा से अहाँ नहीं दे पाते न समय जिहड़ा है अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है इसी कने अहां दे जीवन च भी बड़ी अहम भूमिका जिहड़ा है समय अदा करता है तो थोड़ा दे आगे बढ़ते हैं कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते हैं

ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे ये फरमाइश इंजॉय की थी। जरूर ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने। इसी कन्या यहाँ फ्री थे थोड़ा दिया क्या बढ़ते न कन्या अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहा तक पहुँचा दे न कने थोड़ा देर अगर मोबाइल फोन दी और नज़र दौड़ान दे ना तो तुहां तक ये भी पहुँचाई दे ना कि ये फरमाइश अहाँ तक किन्ना पुजी हो ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना दा नाव है कविता जी कने से रहने वाले न स्लेट गोदाम ते तो जरूर तिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचा।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी कन्या हाँ फ्री ते थोड़ा दे अग्गे पढ़ते न कने सुनील जी तक हाँ ये फरमाइश पहुँचा देन सरैने वाले न कनेट ते।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी कन्या हाँ फिर ते थोड़ा दिया के वर्णे कन्या अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है। अगली जेड़ा फरमाइश है से यहाँ तक पहुँची हुए वट्सएप के माध्यम ने तिना का नाव है सचिन जी कने से रहने वाली ने इच्छी ते।

आंबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारी इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा दे थे अपनी रेडियो दो शशि कने। इसी कने हाँ ये फरमाइश अगली जड़े से पहुँचा दे न शमशेर सिंह जी तक कने से रहने वाले न दरगाटा ते। इसी गीत कने तुहां सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति, क्योंकि समय जड़े से उन्हें जो बोला था कि अनुमति जड़े से तुहां ले लिया।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: हरा है नीला,
1: सूखा है नीला, हरा है गीला।
2: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
3: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
3: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का

0: समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी।
1: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
2: एक्सक्यूज मी सर,
3: ये मेरा इस्तीफा।
2: क्यों
3: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
4: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
5: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
6: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
7: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
8: तो मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा।
9: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित मेरा इस्तीफा।
12: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
11: सॉरी यार,
12: काम कीजिए आप लोग।
10: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
13: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
14: अरे बेटा,
13: अरे इतना मैं तुझे बताता हूँ, शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे होगी हो क्या तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओ, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

97.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: सूखा है नीला, हरा है गीला।
2: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
3: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
3: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों?
6: सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
12: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित, मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग।
14: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मी, बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: अरे इतना मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके अब रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आओ। सचिन कपूर हाजिर भुजगो तुंदे सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी हुनने वाले रहा सभी श्रोतागणरा जितने भी श्रोता हसुगे बुनरे भुंदे जितने भी श्रोता अपने इस कार्यक्रम जो कि असो हुनदेन। तो श्रोताओं आज कार्यक्रम में इनके खास मेहमान जी बिल्कुल अब है कि श्रोताओं से तुस हुआ है सब प्राइज थोड़ा करी करी दिन दहिन क्योंकि

0: सुशीला ठाकुर होगी तुम तुस होगी कि सो रूबरू करवाई दे कजो कि यार नवा गीत किया सो तो सो निकलो हाथ इस गीतारा आनंद किया सो असू जरूर लेना है। लेकिन तथों पहले सोतो कुछ एक जानकारी के अनसो तुस होगी असू जरूर शेयर करनी साझा करनी ना और फिर तथों बाद तथों बाद किया सो अने जानकारी और भी शेयर करनी पर तो है सब श्रोता के सो भरपूर जुड़ सकते हैं अज शीला गदन शीला ठाकुर सोगी 7018879 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ तू होगी साझा करनू हाँ 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और शीला ठाकुर सोगी गलबात कर सकते हैं श्रोतों और सोगे अपना पसंदीदा गीत किया सो भी होने सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते बिल्कुल नंबर तमें तू होगी शेयर करी ते बहरहाल चल दें और मौसम रे जानकारी की सो तुस हो गया है शेयर कर लें देन साझा कर लें देन करखनगर का धर्मशाला रा मौसम जानने वास्ते किया सो असु अंदर सो उत्सुकता की सो रेंदे श्रोतो खासकर जो बाहर श्रोता के सो रेंदे हैं ता इस समय 11-15 डिग्री सेल्सियस रे बीच की असो तापमान बन रहा है श्रोतों और नमी री गल करूँ आऊँ ता नमी इस समय की असो बूंजा थों लगभग 60% रे आसपास की असो बन रहा है। इनते पहले श्रोता असू की कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थों बल्लू करते हैं नमस्ते जी हेलो
1: नमस्ते सर
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: क्या हाल जी
0: बहुत बढ़िया जी तो इधर सतुन दा के हाल चाल नो
1: बस बढ़िया भाई जी सुन कर दे तुम दे प्रोग्राम में
0: अच्छा जी कौन बोलन देन और कड़ी थम बोलन देन
1: भाई आऊं बोल कर दा हिमाचली लोक गायक प्रवीण ठाकुर
0: हिमाचली लोक गायक प्रवीण ठाकुर
1: हां जी
0: अच्छा क्या बात है प्रवीण जी बहुत-बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है तुंदा प्रवीण जी ए मेल तो पहली बार हेरू में कि अक्साइड हिमाचली लोक गायक प्रवीण ठाकुर न और दूसरी साइड हिमाचली लोक गायिका शीला ठाकुर इन ता प्रवीण जी तुंदा भी बहुत बहुत स्वागत और शीला जी तो है इंदे आज के गेस्ट हैं तुंदा भी वेडियो गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन
2: बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी और स्पेशली थैंक्स रेडियो गुंजन मीन जो हदने इतना प्यार देने जो स्पेशली जो फर्स्ट कॉलर जुड़े ने त्यारे हूँ हार्दिक दिल थू अभिनंदन करनू क्योंकि सो खुद अक गायक ने अते अक गायक बंदे ने सपोर्ट करने वास्ते जने कोई बंदा इंदा तो बहुत बड़ा दिल चेंदे है गल्लो सो थैंक यू प्रवीण जी
1: थैंक यू जी थैंक यू ता आज मैं सोचू मुझे पता तू तुझे जुड़ना था मेलू हमी कॉल करदा
2: थैंक यू जी थैंक यू सो मच प्रवीण जी
1: और तू है ठीक ठाक है ना
2: हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी हूँ ते तुंदे आशीर्वाद तो तुंदे प्यार थू ते सेहतमंद ते तू कामना करनू कि तू अभी खरे हूँ सब
1: हाँ जी ते बड़ा अच्छा लगू तुंदा गाना जी कहने इंदे श्रोता भी सुन कर दे ना चाहता कि सारे सुन सपोर्ट करन लाइक सब्सक्राइब चैनल तुंदा करन सभी
2: प्रवीण जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच क्योंकि इनी भावना हर कलाकार अंदर होना चाहिए कि दूए सपोर्ट करने रे ना अते मन नहीं लिया कि जस अंदर ए हुंदा कि कस की ऊपर चुकने री भावना हुंदी है ना मोस्टली मेरे मानू ए रहे कि ये हुंदा कि नहीं यार ठीक है मेरा चल लूंदा कोई चक्कर ना बट इन्हें लोग तो बहुत रेयर हुंदे ने है ना ते मानू हर इंसान यही भावना रखा सो तो दी भावना री बहुत कदर कर दे थैंक यू सो मच परमात्मा तो शुचंडी कर
1: मिंजो भी मोर देन 15 मिनट पहले पता लगू कि तुसे इने ने कब दे रेडी अंदर ता मैं चलो आमी कर सकता
2: थैंक यू
0: प्रवीण जी थैंक यू सो मच जी और कि दुए इतना ज़्यादा अप्रीशिएट करने वास्ते कि दुए इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वास्ते हर कलाकार अंदर शीला ठाकुर री गल आऊँ चुराऊँ कि हर कलाकार अंदर किया सो ये भावना बहुत वाकई में ही हर दुए अकी दुए की सो सपोर्ट बहुत चढ़ती कला अंदर चीज़ा के अंसो पूछी गंदी प्रवीण जी क्या फरमाइश रहने वाली तुम्हें वेड़ी गुंजन में अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले अच्छा चलिए बिल्कुल पता शीला जी तो

0: ठीक है प्रवीण जी, थैंक यू सो मच, जरूर तुसु हुण लै है।
1: थैंक यू जी,
0: थैंक यू। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और इन अगले श्रोता भी असोगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी, हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार
0: जी, कौन बोलुं देन और कड़ी थों बोलुं देन?
2: आऊं कृति बोलुं देन नरवाणी।
0: कृति जी नरवाणी बोलुं देन
2: जी।
0: कृति जी ठीक ठाक ने नरवाणी वाले सब मनु
2: जी?
0: क्या फरमाइश है कृति जी तुंदे?
2: गाना हुन्नो
0: हुआ। हाँ आखी हुन्ना कुन दिना?
2: सोने तो हुन्दे माहिया।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर होने ले। धन्यवाद
2: धन्यवाद।
0: आशील जी सब भी पहले कॉल किया सो आया किसकी प्रवीण जो सिंगर ने तैयारी और इंदे ते तिन्यो पता लगो 15 मिनट पहले कि शीला ठाकुर की सो लाइव लग रही है ना। आफ्टर लॉन्ग टाइम तुस होगी कि सो मुलाकात भुचू कर दे। आई थिंक अक साल बाद देखिए सो लाइव मुलाकात भुचू कर दे। तो इस अक साल अंदर क्या क्या घटित हुआ तुस होगी, क्या क्या नो एक्सपीरियंस जुड़े हैं तुस होगी और क्या क्या तो है नोई चीज़ अगैन सो इनहेंस करी?
3: एक्चुअली सचिन तो सही बोलूं दे कि आऊं मे बी 1.5 साल बाद ही में ना आसो प्यारी हूँ बाद अवे एक अड्डो अपना गदियाली में छपना। सो सम टाइम कई रीजन हुंदे लाइफ में ना ते कई बार शुक्लेक्शन करने में टाइम लगन दा तो बस माइंड मत हो कि मतलब तुझे पता जी आऊं फोक पुटी ज़्यादा काम करती, मुझे फोक ही अपना पसंद है ज़्यादा। ते ये है कि अभी नोए सिरे हूँ आया ते मतलब मनु काफ़ी प्यार दिता मुझे इं गाने में। सो थैंक यू करनो जी जी मुझे सपोर्ट करे, जी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करे मेरा जो चैनल भी। तो परमात्मा तीन जो भी खुश रखा सब भी हो। तो बाकी है कि है काम करते रहना, अच्छी अच्छी कंटेंट जो ना अपने ऑडियंस अगे लेंदे रहन। हाँ जी
0: थैंक यू सो मच तुंदा भी। और चलिए आगाज़ तुंदे गीत होगी तो ज़रूर भूना ही, लेकिन अक मौके जितने भी इस समय हज़ार लक्ष होता तो सो हुनो करते हैं तियाँ ताएँ अपनी आवाज़ किया। सो बिल्कुल जो तुंदा नवा गीत इस अगीता मन जो है दो ही बोल गए सो जरूर होना चाहते और दातों बाद फिर यह श्रोता जो होना ले जी।
3: थैंक यू सो मच तुंदे अपने हुनरे गीत ने इंदे ब्लड अंदर इंदे पैतृक गीत ने तुशो हुनन्नो तेरे दो ही बोल ते तू है इश्यू हुणे भी शेयर भी करें खूब सारा।

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্জ পর রেডি গুঞ্জন ধারম চালা তো হ্যাঁ সবে টিউন কর রো রে কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ গান সো বিলকুল লাইভ হে চল রহি হিন অর আ বহুত প্যারে দে গীত কি আসো তো হে হুনো শত শীলা ঠাকুর রা ফোক কি আসো ইন আক মুকে ফিরে রিপিট করো ধরাও অর ফিমেল ভয়েস মা আই থিংক এ পহলা এ ফোক আ লেটেস্ট জো হে সবে রেডি গুঞ্জন রে মাধ্যম তো আপনে আপনে ঘরে মন শুনো অর জিতে ভি লক্ষ শ্রোতা হুনো বরহাল ইন দে শ্রোতা গণা সো গি কানেক্টেড হিন পুস দেন कौन बलुंदन और कड़ी थम बलुंदन नमस्ते जी
1: नमस्ते जी क्या हाल चाल
0: बहुत बढ़िया जी कौन बलुंदन और कड़ी थम बलुंदन
1: आओ जी हंसराज बलुंदा
0: हंसराज जी कड़ियों
1: सिंहोर थम जी डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील भरमौर
0: अच्छा डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील भरमौर हंसराज जी बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा वेड़ी गुंजन में हंसराज जी आज जस वो कि हिंदी बहुत ही अच्छी लोक गायिका की या हिमाचली गायिका हिंदी गदयाली गायिका इवन के हम बोलना चाहता शीला ठाकुर जी मौजूद हिन
1: अच्छा जी
0: जी तो है शीला ठाकुर होगी गलबात भी करी सक दिन और ये जो तो है अब जो गीत हूँ ये शीला ठाकुर जी है कि ऐसो गुनगुनू रहा
1: ना बड़ा अच्छा गीत है बहुत अच्छा गीत लगा थी
0: अच्छा तो शीला जी होगी गलबात करी सक दिन
1: चलो फिर कर लगा जी फिर मतलब मौका लाइव
0: अच्छा चलिए ठीक है जी जी
1: हाँ जी जी
0: तो क्या फरमाइश है तुम जी
1: वो है बरखा वो खा जे
0: हाँ जी
1: बरखा वो है आज दर्द सा
0: अच्छा बरखा बरखा तो वो है भाई ठीक ठाक बरखा वो है
1: अच्छा अच्छा ये तो निगर दे रहे हाँ बुरमोर
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: हाँ
1: आज बुरमोर ये गीत होना वाकना
0: हाँ जी
1: बंदे वो नाज गुरु वाला वो
0: बंदे आओ नाज गुरु वाला नाज गुरु वाला अजय भरमौरी रा गीत आई थिंक जड़ी तक आऊं समझी पाओ गर्दा एक गीत चलिए ठीक है फिर मैं आँख मौके सर्च कर ले ला अजय भरमौरी री आवाज माने जी ठीक है धन्यवाद जी धन्यवाद तो आइए जी श्रोता चल देने है और शीला ठाकुर की गलबात कर दे हिन शीला जी तहद पूछू कर दे थी कि तो है आफ्टर अक साल बाद किया सो तो है कम बैक करो और नो डाउट कि अक सालों तुसो लगभग लगभग किया सो अब गायकी री फील्ड में 5-7 साल आई थिंक पूछ गया इतों ज़्यादा
2: मतलब
0: ऑल ओवर तो बहुत साल
2: ऑल
0: ओवर तो तूने मेरी उम्र नहीं तूने पूछ गया
2: सीरियसली सीरियसली हां बट कम बैक रितु है गल करूं दा सो मिंचो हार्डली 5 साल मतलब द्वारा जो मैं 15 16 साल बाद कम बैक करो सो मुझे 5 साल हो गया फील्ड में छोरे द्वारा
0: हां जी तो नो डाउट कि हर कोई जानदा हो और इवन के है बड़ा बखूबी जानदन बड़ा बारीकियों के जानदे कि तो है तो समय काम शुरू करो तो जैसे समय कुलियो बाहर निकलना भी किया सो मुश्किल बंदा तो इवन की इन द योल साइड भी कि है ना सीरियसली बोलूंदा शीला जी आज मेरे जहन में गल चलिया है कि दाड़नू थो दुई कुड़ी न मेरी मासी दाड़नू भी हो रही था सो मासी दस दी थी मासर दस दी थी कि इन दाड़नू थो सो दुई कुड़ी हिन सो दुई कुड़ी बड़ी फेमस थी मतलब ता सो दुई के लिए आकता तो है थी और आक शायद लड्डू दी थी
2: मतलब सचू बोलते है जो है नाम वाला वही तो बदनाम है तो जने जिंदगी में ना कुछ भी थोड़ा हटके कर लेना शुरू में तुसी बदनामी ही मुलनी है ठीक है बट ये कि जने तुसे अचीवमेंट कर लेंदा लाइफ में कुछ तो सोई जो तुंदे मुझे लगता तुसी जो क्रिटिसाइज कर दे सोई तुंदे सभी मोटे फॉलोवर ते चाहने वाले बंदे सो मुझे लगता कि यह चीजें नकारना चाहता अच्छा सगो बोलते निंदक नियरे राखिए चाहे कुटी कहते आंगन छपाए है ना ज्यादा मिठा बलने वाले होते बोलते दूर रहे ते निंदक तो कोल रखा क्योंकि कम से कम तुंदे आप गुण तो दस सुन दे सो सो अच्छे थे सो लोग जे जिया क्योंकि तिया चौर मनु आगु ते तो गल करनी यार फलानी कुड़ी एवड़ी हूं यार तिया मना कौन बोले तिया सर्च तो मारना इनके गाने तो हुने इस बार नहीं तड़ी में फेमस हुंदे कई बार नेगेटिविटी भी ऐसी बड़ा कुछ दिंदे लाइन
0: दिंदे आ तो तस समय वे दौर रे आऊं गल करू करदा थू कि तस समय और अब कने इस टाइम में क्या है तो है कलाकारी अंदर क्या अंतर किया सो पाओ
2: सचिन जी मतलब आवे तो मुझे थोड़ा इजी वे पूछू है ना बट टस टाइम थोड़ा घर हथू निकलना भी तो डिफिकल्ट हों है ना मन ले चलो मेरे माँ बूढ़े मुझे सपोर्ट करे है ना सो मैं पढ़ती रही कॉलेज में तो ऐसो कि मैं अपने इस लाइन में भी चले तो पहाड़ी एल्बम वगैरह ज्यादा दूर थो है ना 2003-04 की गल करूँ फिर ये थू कि कई तो बेचारे रह बोलते ना सो दिल के अरमा सो में रह गए कई गोली होंगी बेचारी यार इनका भी दिल करता सो आऊँ मुझे ही लगता तू कई बार आऊँ बल्दी थी यार तुम्हें माँ बुढ़ी तो गल कर नहीं यार तुम भी गल हूं नहीं मन लाया जी आपू तो कर दी तो इनकी गोली बिलोरी बगाड़ना है ना सो इन्हें ना दौर भी थू था स्टैम में चलो बट मुझे लगता आवे तो हर कोई मनु नहीं ना चाहता इस लाइन में ना तो कैसे उन्होंने अच्छा लगता अजकल स्क्रीन मिलना एक्सपोजर सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मुझे लगता हर कोई करूँ ईजी है बट एक डिफिकल्ट टाइम भी तो बहुत जरूरी होंगे लाइफ में तुझे पता लगता कि स्ट्रगल क्या चीज़ है नहीं
0: तो वाकई में तो है पहले जने स्टार्टअप करो तो इस फील्ड में इस इंडस्ट्री में तहने भी किया सो बड़ा मतलब सो टाइम तो डिफिकल्ट टाइम तो है ना सो भी तो है फेस करो आज चलो चीज़ा इजी हिन इन्हेंस करने इजी हिन लेकिन आज भी किया सो कर खा जहने पाँच इतने साल बाद थो इंसान कम बैक कर दे तो सो दिक्कत आ गया सो हिंदी ने कितना करी सपोर्ट रहा तुंदे हस्बैंड रा तुसोगी तुंदी फैमिली वा तुसोगी और तुंदे रिश्तेदार रा चाहने वाले कितना करी सपोर्ट किया सो तुसोगी रहा
2: चलो मतलब फैमिली तो तुझे पता सोगी ने बहुत काम करना मुश्किल बंदा मतलब ठीक है हस्बैंड सपोर्टिंग ने मेरी जो डॉटर ने सो भी बड़ी सपोर्टिंग ने मेरे वास्ते इवन मिंजो कि मेरी जो एल्बम वगैरह होंगी तथी में भी बच्चे काम करते मिंजो सोगी तो इवन तीन मेरा जो अपना इंदा आवे जी तुझे पता मेरा मैं पंजाबी कल्चर में चूगा बट मेरे तीन बच्चे ने मेरी धुनी कुड़ी है सो पूरा गादा जो कल्चर अपनाई लू इवन एक सब गाने गंदी सोगी सब कुछ कर लेंदी तो मुझे लगता कि मुझे तो 110% क्या मुझे लगता 150% मुझे फुली सपोर्ट है ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास ऐसी कोई ऑब्स्टेकल नहीं
0: चलिए तो श्रोताओं तो है कॉल करो कर दे थी बिल्कुल है कनेक्ट कर दें तो सो ज़रूर तो अशीला ठाकुरों की गलबात कर सकते हैं 7018809 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करनो साझा करनो हाँ 7018809 पर तो है गीत हो नहीं सकते हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी साझा कर सकते हैं बहरहाल इन अगले श्रोता सूगे कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
3: नमस्ते जी
0: नमस्ते
3: वो क्या हालचाल है ना
0: बहुत बड़ी अच्छी कौन बोल लूं देन और कड़ी थों बोल लूं देन
3: ए तपोवन थे मेजोराम
0: अच्छा तपोवन थों सफेदोराम ठीक ठाक
3: बड़े दिन बाद फोन किया हां जी बढ़िया बढ़िया
0: अच्छा बड़े दिन बाद कॉल करी तो है बिल्कुल सफेदोराम जी आज असोगी केन सो शीला ठाकुर जी केन सो जुड़ रहे हैं हेलो मेरी आवाज छुंदी सफेदोराम जी ठीक है जी नौ गीत की जरूर अक मौके ते ब्रॉडकास्ट करी तब शीला जी तो गुजारिश कर लगे ले है ना जी ठीक है जी सफेदोराम जी धन्यवाद श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा अगले श्रोता सो गी कनेक्टेड हैं लेकिन कसकी कारणवश फिर डिसकनेक्ट किए सब जगह और शीला जी धन्यवाद कि तुंदा गला फिर खराब आ फिर मतलब कि मैं बड़ी मौके एनालाइज कर रहा कि जहने भी कहा तुंदा शो बहुत है थो अक दो दिन पहले गया हाँ। सो गला गया सो खराब भूचे गंदा और मैं लिटरली बड़ी मौके एनालाइज करो मतलब क्या लगता कि सेरी कृपा बुंदी थी सवाल अटकोटा
2: एक्चुअली सचिन अब क्या बोलूँ तो तू बना शीला मतलब इन्हीं नहीं गल करती अब हम क्या बोलूँ और कि क्या बोलूँ कि और भी ना बोल सकती कि फोविया वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम हो सकता है मिंजे ने पता कसेरी कृपा राजे ने जसेरी भी कृपा है बस बोले ना सब जिन्हें बट मिंजो की मोस्टली ये होंगे
0: हाँ,
2: भी ऑलमोस्ट तू है मिंजो मतलब ये पता लगना
0: चाहिए एग्जाम्पल दिन गमरू थू गमरू दशहरा थू पिछले साल है ना तब भी तुम्हारा गला खराब थू है कारण कार्निवल में मिले थे तावे गला खराब तो दाढ़ी मेले में मिले तावे गला खराब तो आज ही हुई ना तो आज भी गला खराब
2: चलो परमात्मा इतनी कृपा ना कि फिर भी गाय लेनो बल देना मुद्दा ही लाख पूरा चाहे तो क्या होगा वही होगा जो मंजूर
0: होगा खुदा होगा क्या बात है क्या बात है
2: जो ये चीजों फर्क न कर दे
0: चलिए ठीक है शीला जी तुंदे फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट बोलूं दो तुसो फरमाइश आई है तुंदे की जो तुंदा नवा गीत के निकलो सो अक मुके इन दे श्रोता थी ये हुनना चांद दिन ता गुजारिश करनो जरूर
2: ठीक है जी तुसी ना नाना ता सुका सुना तू है इनता शियो हुनने वाले ना मुंदे इन दिगो कात ने
0: जी बिल्कुल।

0: सो ये राम ते लक्ष्मण रा एंचली रा पार्ट है, मैं थोड़ा गट्टी मतलब गट्टी के रेगा हुए थोड़ा यारा सचिन जी रा भी
1: मेरे लिटरली मन तो अब जो हम फिर एक मौके फरमाइश करना चाहंदा तो जो क्या है लाइव
0: स्पेशली हूं थोड़ा गल कट्टी के हम बोलनो कि रेडियो गुंजन जो खूब सपोर्ट करा खूब मतलब इतना अच्छा प्लेटफार्म है ना कि ये मतलब किया आर्टिस्ट जो अगे लेंदे आर्टिस्ट जो तो छड्डा और भी कई मुद्दे ने जो आगू लेके रहंदे सो इन्हें ने चैनल जने अस वाले हुंदे ने नहीं फरमा हुंदी ना तो अह बड़े कुछ अपने विचार अगे ले सकते तो हूँ बोलूँ कि प्लीज प्लीज तू खूब लोग जुड़ा इं होगी तो अपनी दिलरी गल्ला साझा करा ताकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता रहे। सो थैंक यू
1: जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अह लाइव इन एक्चुअली जो तू है गाई ना शिला जी, वाकई में बड़ी प्यारी लगी बुनी। और इवन क्या तू दसना चाहता कि इस कार्यक्रम जो नो डाउट कि बच्चे भी हों यूथ भी हों लेकिन इन सियाने के ना सो बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम जो कि सो हुंदे हैं तो सभी थो गुजारिश भी करना चाहता कि जरूर तू जल्द तो जल्द जुड़ी सकते हैं 7018807098 पर। शिला जी एक लास्ट फरमाइश मेरी और तो जो कि अज मुझे मौका मिलो कि आऊँ तू अगो फरमाइश दे सकूँ थोड़ी करिया। ये जो एंचली तू है गाई ना बहुत प्यारी गाई आऊँ जानता कुछ इसी इसी सुर में इसी ताल में गए सो दो की लाइन और बुझ गया मजा चली गया।
0: मोटे होंदे ही है ना बट तले ये चीज जरा सी इल्म ना तो बड़ी जरा समझ आई तो पता चलो यार क्या चीज है ना मतलब पूरा गूड़ ही फोक मा फोक रा जो गूड़ा सो इतनी मई
1: इतनी मा और तुंदा ना गला भी वाकई मई मतलब ये लगो करदा कि ये एक्चुअली ये प्लीज ये मेरे गुजारिश है ओने रहूं गुजारिश करो करदा कि इस प्रकार रा गीत की सो सो
0: सब होना चाहिए। आप कुछ ऑर्डर दो हम लोग आपके लिए ही है ना तुंदे वास्ते ना।
1: चलिए आग मौके प्लीज।

0: सो जड़े बनवास टाइम में जड़े इंदे राम जी सो लीला थी राम जी वास्ते कुछ भी पॉसिबिलिटी इन्हें नथी की तिया वास्ते सो सब कुछ जो त्रिलोकीनाथ ने कुछ भी कर सकते बट जड़े तिये रुकी जड़े लंका राजा रावण तिया ले गया तो क्या अक भुथुरे मणु हुई तिया अक आम मनु है ये भूमिका निभाई ना प्यार रे करके मोचड़ो ये रुवरद है कर अगी अभी मेरी सीता मतलब अब आम पुरुष वाले दी भूमिका निभाई ताऊ मोलो कि इन दे जो सियाने ये तस टाइम आ तो पकुरी पकाई रोटी खाऊं दे सचिन जी आए ना सच्ची बोलू नु आए पकुरी आओ एक्सेप्ट करनो है चीजो आए जो खाऊं दे ना पकुरी पकाई रोटी खाऊं दे ना मतलब जी मलना पे ना पिठा लिया दुकान नो मला रोटी पका सब कुछ सो बट आकाश तो इन्हें प्रोसेस दितरो एंड थैंक्स इन दे सियाने
1: लेकिन मुझे लगता कि जो कल्चर हा ऐसा इसी संभाली ले इतनी छेड़खानी ना कर ले इतनी करी चीज संभाल ले लेता है बहुत ज्यादा
0: गद्दी कल्चर बुढ़े रहने आओ तो सिर्फ एक गल बनू कि ए जो इंदा पैतृक संपत्ति है ते आहे तेरे बच्चे न ते इंदा फर्ज बनदा कि तू अगू लेके रे जान है ना तो अच्छी गल सगो को कि ए जो इंदे अगुरी जनरेशन है इयो इंदे संस्कार इंदा कल्चर इयो सब कुछ इंदा स्ट्रगल इंदे सियाने दा पता लगना चाहिंदा कि किया गुथ दे ही है सो गाने है ना अच्छा राम ते लक्ष्मण गुथुरा फिर अक हरन हरने रिस जो जोड़ी है तेरे बारे में दसीता मतलब कितनी कितनी गल है यार मतलब जो कंस रजो संभाजन है थी है ठाकुर जी उती में जम्मे ही है जेल लमा सो तेरा गाना भी अदी
1: पूरा संवाद भी है
0: मतलब कि है जम्मू कि है क्या क्या बुआ सो कड़ी रे दे सान से आने ते मिन जो मूलन ता उते तेरा चरण धो धो पियो आवे
1: चलिए श्रोतों गलबात ही चली रहने हाँ और कार्यक्रम तो सब हूँ कर देने समय दी अपनी गपार जो सचिन कपूर सो गया और आज कने इन दे खास गेस्ट शीला ठाकुर भी मौजूद हैं ताइए जी शीला जी राको और प्यारे दे गीत किया सोतन दे वीडियो सेट में है ब्रॉडकास्ट कर

0: শত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গা পাগে না সো চল রহিন তো আইয়ে জি কার্যক্রম মে হ্যাঁ সব জুড় রহিন শীলা ঠাকুর হোগে আর चलिए जी श्रोतों समेरा पता ना लगता कि गाने समय की सो पूछे और समेरा अक गल की ना सो समेरी बड़ी खूबसूरत है शीला जी कि समय की सो कहानियाँ भी बदली सकता है कहने भी अक क्लिक रही जरूरत बनते अक सैकेंडरी जरूरत बनते हैं तो बनते हैं ना सो तो बनता सो सैकेंड ही की है सो इंसान जो तारे देंगे सो समय पर सब चीज़ा बोना चाहिए और समय की कदर की है सो हमेशा करना चाहते हैं और समय पर जिनी मनु है तुम्हें हेल्प कर रहे जो तुम हो गए सपोर्ट में खड़ रहे हैं जो तुस हो गए बड़ा अच्छा रहेंदे त्यारी कदर भी सो जरूर करना चाहते तशीला जी थो जानी लेंदे श्रोताओं की अपकमिंग क्या इवेंट यहाँ रहने वाले और अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट की सो यहाँ रहने वाले क्या फर्दर फ्यूचर प्लान किया अपनी जिंदगी मंच भी और बिल्कुल कजो क्या है तुस हुनना चाहते ना हमेशा था वीडियोज रे माध्यम थो भी क्या क्या नवा गीत क्या ना सो तुह लेकर ही लग रही क्या फर्दर प्लान हैं तुंदे
1: सचिन बोलो हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए तो मैं तो सोच रहा कि अब म्यूजिक बस से मरना तो म्यूजिक बस से जीना
0: क्या बात
1: सो क्योंकि फोक अंदर में वापसी करिए तो मेरा जो मैक्सिमम जो मेरा मटेरियल है फोक का सो मुझे बड़ा ज्यादा मटेरियल प्योरा जो मेरे गाने हैं ना सो अब ये चल रहा है बाद महीने डेढ़ महीने दो महीने बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट
0: बिल्कुल फेसबुक माध्यम तो भी है लाइव मौके पूरा दस ही दिया यूट्यूब चैनल रहना फेसबुक तक रहना नहीं तो फेसबुक में तो है बड़ा छोरन लेकिन यूट्यूब बड़ा मायने रखता है सिंगर वास्ते तो यूट्यूब दस ही दिया
1: सो प्लीज मुझे जो भी हुन होंगे सो तीन होगी मेरे हाथ जोड़े की बिनती है कि मेरा यूट्यूब चैनल है शीला ठाकुर 1980 तो तू तति में गच्छा मेरे तति में सब गाने पे उरे तो जो रिसेंट 4 अक्टूबर वो छूरा तो तीन खूब खूब प्यार दिया लाइक करा शेयर करा कमेंट करा सब्सक्राइब करा अपने यारा दोस्त जो अपने मम्मी पापा जो अपने नियर डियर जो सब यो शेयर करा गाना ताकि सो घर घर पहुँचे ना क्योंकि सो मेरे भी बड़े दिला हूँ अटैच ने ये गाने क्योंकि इनकी पैतृक संपत्ति तो सोच दिया कसी अक्की तक न रहने घर घर पूजन बस यही बोलना तुश हो
0: क्या बात है तो चलिए फेसबुक रे माध्यम तो भी तुसु होनू कर देन हेरू कर देन ता जरूर तो है सब शीला ठाकुर जो प्यार जरूर दी है और अपना आशीर्वाद जी हैं अजय दिन तक दिता ते हैं दी है कजो कि बड़े डाउन टू अर्थ ए गायिका है और बाकी मैं दिल अंदर कुछ बना यार है जो बंदा सो सिर्फ जवान में बंदा और सो पट कर करे बलि दिन देन और ऐसा इंसान की सो दिल आ रहा वाकई मैं बहुत सच्चा
1: मतलब आऊं तो शेयर बोलूं जो इंसान तुशो डेली एक टाइमली बहंदा तुसो की गल करदा तुशो मौसम रे बारे में दसदा तुशो होर भी कई चीजन जिया दस जो प्रमोट करदे ना ना क्या अप एंड के डाउन अपना जो रेडियो गुंजन है ना एफएम
0: 91.2
1: सो तू प्लीज इशू एरो करा चैनल जो तो सचू हुनु करा सचिन जी हुनु करा मतलब डेली 4 बजे ना यारी बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बच्चे है ये गल लवदीन भी बच्चे है ताकि सचू भी घर घर जो है खैर घर घर ही नहीं पहुंच रहे बट इं खूब सारा प्यार दिया है ना तुंदे प्यार भी बहुत सपोर्ट जरूरत है क्योंकि तुंदे बाद यह कुछ भी नहीं है ना
0: हाँ जी बिल्कुल थैंक यू सो मच जी और चलिए अक बड़ा टफ है ना सवाल है फिर सवाल रहा जवाब गया सो तुसु गाई करी देना है नो डाउट तुंदे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव ने हब जो भी कैमरा बचो किया सो तुस वो कवर करो कर दे तुंदे हर एक मोमेंट जो किया सो कवर कर दे हैं जाए सो तो है स्टेज प्रोग्राम करो कर दे जाए तो है शूटिंग करो कर दे जाए घर का इंटरव्यू वास्ते कुछ हो रहे हैं है ना हर एक मोमेंट जो सो कवर करने रे किया सो अपनी और तो भरपूर कोशिश कर दे अपने हस्बैंड वास्ते इस प्यारे दे नाचीज वास्ते कुन दिन गीत गुनगुनाना चाहते हैं आज बिल्कुल लाइव और
1: सच मतलब आऊं क्या बोलूं अगर आऊं मिंचू बोलता कुछ एक चीज है ना जुबान ते डिस्क्राइब ना बुंदी है बोलता पति पत्नी का रिश्ता इना बुंदा क्या है लड़ी गोली मिंटा पेंदे ना पर मुझे लगता कि पति है अच्छा दोस्त भी कोई ना हुंदा है ना जो तुशियो क्रीबली क्रीब भी मतलब तुशियो समझदा ते बट मेरी लाइफ माता यारी भूमिका बहुत ही मोटी है कि मतलब आक साया ना मुंदा तू

0: सो आई फील मतलब आ चीज़ फील कर दिया बट परमात्मा करा हर पति पत्नी री इन्नी बॉन्ड रही है ना तो जो जो इंसान जच है ना सच कोई भी आनु हर इंसान जो भूलना ना चाहता तुंदी पहल कुने करी थी तुंदे जीवन में पहला इंसान कुने ना आहू जिन्हें तुम जैसे मदर है ना जी हाँ अशो जमदी है नौ महीने पेटा में रखते कितना कुछ सेवर होंगे तो है ना तो आख टाइम इंदा क्या है बोलता तू है जनरेशन कई बार बल्ले इंदे तू अगर करू इंदे वास्ते बट तीन जो करू है ना सो कोई करे कि ही ना दस सकता है ना आख अपने माँ बुढ़ी ना भूलना चाहता कभी भी जिंदगी में अख सो इंसान जो तुश हो पहले ए बी सी लिखना स्लाइडिंग लाइन ये चीज़ा दसदा तीयों कभी ना भूला आखि इन्हें मित्र लाइफ में जो तुंदे वास्ते कुछ चाहता नहीं फिर भी तुंदे वास्ते सब कुछ करता तो अशियो ना भूलना चाहता तो सचिन मेरे लाइफ में ना मेरे वास्ते हर वो इंसान बंदे नहीं है जिन्हें मेरी लाइफ में जरा कि सूई री नोक जितनी भी मेरी मदद कर रहे ना सोचा इंसान कोई भी बोआ इवन दैन तू है भी बोन अज अगर आऊँ रेडियो गुंजन में भी बेहो रहे ना अगर तुंदी तरफ तू मुझो अगर इनविटेशन ना हुंदा तो शायद सचो आऊँ इड़ी ना बेहोरी हुंदी ना सो थैंक यू सो मच तुंदा भी ते परमात्मा तुश सभी चढ़ती गलम रखा हूँ आके गल बलो बार बार मुझो और कुछ ना बलदा भगवान मुझो माफ़ करे अगर कुछ जीवन में गलत करूँ या कशी वो हर्ट करूँ बस ये कि मुझे खरा कम कराऊँ कराएं बट ये क्या मैं इंसान इंसान तो गलती बनती रहती है
1: बनती बिल्कुल इंसान गलती रहे पुतला बंदा आशील जी तो है अपना बड़ा कीमती समय की असो श्रोता वास्ते दिता असु वास्ते दिता हा आतुन दाऊँ तहे दिल थो धन्यवाद करनो और बहुत जल्द एक नए प्रोजेक्ट्स होगी तुसों की मुलाकात करनो थैंक यू सो मच शीला ठाकुर जी
0: थैंक यू सचिन तो ऑलवेज सुनियो रेडियो गुंजन FM 91.2 Love you all. Bye-bye.

श्रोताओं, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के आसो तो है सब हूँ कर देती है। श्रोताओं, अचकने कार्यक्रम में आसो होगी शीला ठाकुर जी के सो बन रहे थी श्रोताओं और त्यारा स्ट्रगल टाइम है बड़ी पहले भी हूँ रहा श्रोताओं और कुछ एक आप जो भी हूँ लो तो है जरूर त्यारे गाने जो कि असो प्यार जरूर दिन जितने भी लक्ष्य होता है इस समय उस वो होनो कर देन और शीला ठाकुर करी करे तो है जरूर लिखने श्रोताओं यूट्यूब में SHEELA THAKUR शीला ठाकुर गदियाली सॉन्ग अगर तो है लिख ले श्रोताओं ता बिल्कुल चलीने हिन और जरूर प्यार दिन अपना आशीर्वाद दिन और सोगी सोगी बिल्कुल हर जगह की असो इंजो जरूर हूँ दे रहे श्रोतों। ताऊँ सचिन कपूर हवे तुस उतों इजाज़त के असो ले लनो हाँ श्रोतों, बहुत सी जानकारी जो तुस हो गया है चाहिए तो आठ साझा किया सो जरूर कर ले जो कि आज इन गेस्ट थी है श्रोतों फिर गेस्ट रहे गेस्ट रहे बारे जानने मंच की असो सब समय की असो व्यतीत हुआ और चाहिए तो आठ पूरी जानकारी दिल है। फिलहाल गंदे गंदे तो तुस सब भी जो ये बोलना चाहनो श्रोतों की हंसते रहे मुस्कुराते रहे और जी अशीले जी ये दसो कि अपने सियाने जो कि आसो मत भूला है ना जी कजो कि तिया थो कि आसो है चीज़ा इनहेंस करू करते हैं ग्रैब करू करते हैं और तिया थो कि ऐसो चीज़ा है पकड़ू करते हैं तो अपने सियाने जो कि आसो मत भूला श्रोता हूँ और अपने सियाने रा आदर सत्कार की सो जरूर करा माँ बुढ़े भी इज्जत किया हूँ हमेशा बलनों की जरूर करा और अपने सो की प्यार की सो जरूर रखा। सो हंसते रहे मुस्कुराते रहे और रेडियो गुंजन जो ये हुंदे रहे और हुणंदे रहे। नमस्ते धर्मशाला।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा के तत्वाधान में जिला परिषद सभागार में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक पवन नैयर ने की। शिविर में ग्रामीण युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पवन नैयर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तंगी और रोजगार के सीमित अवसरों की चुनौती से निपटने के लिए युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। DDUGKY योजना ग्रामीण परिवार गरीब परिवारों के युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ने तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2014 में शुरू की गई इस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 18,47,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि 12,43,000 से अधिक युवा रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा दौरे के दौरान जायका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की पीठ थपथपाई। लादरचा मैदान में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जायका वानिका परियोजना द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचे तो परियोजना से जुड़ी 6 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं काफी उत्साहित दिखी। मुख्यमंत्री ने यहां बिक्री और प्रदर्शनी के लिए लगाए गए प्राकृतिक एवं रसायन मुक्त उत्पादों की सराहना की। खासकर विटामिन सी यानी छर्मा के उत्पादों और हस्त निर्मित गलीचे तैयार करने वाली महिलाओं की मेहनत को देख सीएम सुक्खू ने उन्हें शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आज आत्मनिर्भरता से आजीविका सुधार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। आयुष विभाग की ओर से ऑस्टियोपोरोसिस एवं मस्कुलोस्केलेटल विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत DC कार्यालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया गया। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का उद्देश्य लोगों को हड्डियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा विभिन्न बीमारियों के समय पर पहचान और रोकथाम को बढ़ावा देना रहा। उपायुक्त हेमराज वैरवा ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और समय समय पर स्वास्थ्य जाँच करवाना बेहद जरूरी है। हड्डियों से संबंधित बीमारियों की समय रहते पहचान होने से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने कर्मचारियों और आम लोगों से नियमित योग, संतुलित आहार तथा शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। उनका कहना है कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, बगलामुखी, ब्रजेश्वरी, देवी चामुंडा मंदिरों में DIG सौम्या सामसिवन ने शक्तिपीठों में जहां देवी के दर्शन किए, वहीं पुलिस द्वारा किए गए इंतजामों को भी जांचा। ज्वाला देवी मंदिर पहुंचने पर मंदिर के कुलपुरोहित कपिल मुनि ने उनसे भी दिवस पूजा अर्चना कराई और माँ ज्वाला का आशीर्वाद पंचमी नवरात्र में दिया। आगामी सप्तमी अष्टमी नवरात्र में पुलिस के बेहतर प्रबंधन में कोई भी कमी ना रहे, इसलिए इस दौरे को प्रमुखता से देखा जा रहा है। दिव्यांगजन, वृद्धों व विधवाओं सहित समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले 5 वर्ष तक यानी 2030 से 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए उनसे जुड़ी पेंशन स्कीम का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसके तहत 40% की दिव्यांगता पर ही दिव्यांगजन जन्म से पेंशन के हकदार होंगे। अभी ये पेंशन 18 वर्ष से अधिक आयु और 80% की दिव्यांगता वालों को ही मिलती है। इसके अतिरिक्त उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। फैसलों के अनुसार NCAP और इससे जुड़ी तीनों योजनाओं के नामों में भी बदलाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति के

अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस वर्ष प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर तक कुल्लू में किया जाएगा। उनका कहना है कि राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 21 अक्टूबर को इस उत्सव का शुभारंभ करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य शैलियों के संगम पर आधारित ग्लोबल डांस कार्यक्रम इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण होगा। इसके अतिरिक्त ड्रोन और लेजर शो भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ये कुल्लू दशहरा का मुख्य आकर्षण होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एजुकेटर्स के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्हें निचली श्रेणी के कर्मचारियों से कम वेतन देने की विसंगति को दूर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 30 जनवरी 2016 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को 1 फरवरी 2016 से 4200 रुपए का ग्रेड पे दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पदोन्नत पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के बराबर या उससे कम ग्रेड पे देना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने माना कि निचली श्रेणी के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को 1 अक्टूबर 2012 से 4200 रुपए का ग्रेड पे मिल रहा था, जबकि उनसे ऊंचे पद पर बैठे स्वास्थ्य शिक्षकों को भी यही ग्रेड पे देना और भी बाद और वे बाद की तारीख से तार्किक नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के दुर्गम और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जनजातीय सीमावर्ती क्षेत्रों में 116 करोड़ 28 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी के रोगोंग में बैटरी रोंगटोंग बैटरी स्टोरेज से संचालित प्रदेश के पहले और सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। सुनते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: घूर क्या रहे हो? अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने हेयर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे इतना मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब जानू से लेकर कहां मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

0: शाम के 6 बज गए हैं श्रोताओं, और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय रहता है हमारा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। तो इस कार्यक्रम में आप सभी का करती हूँ स्वागत, और सभी श्रोताओं को सबसे पहले सुषमा की दोहा जोड़कर राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को अभी इस समय आप सभी लाइव सुन रहे हैं, और साथ ही आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक लाइव पेज पर भी। जो दर्शक हमें देख रहे हैं और साथ ही फेसबुक लाइव पेज से हमें देख रहे हैं, उन्हें भी सुषमा की गुड इवनिंग। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर अब मैं हाजिर हो गई हूँ रेडियो गुंजन धर्मशाला के स्टूडियो में, और अब से लेकर 8 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगी, आपके साथ करूँगी बहुत सारी बातें, और आपका मनोरंजन करवाने के लिए प्यारे प्यारे गीत भी आप तक पहुँचाऊँगी, साथ ही जानकारियाँ भी आप तक पहुँचानी हैं हमें। साथ ही श्रोताओं, आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर भी आएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये बता दूं कि इस कार्यक्रम को आप 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी नमस्कार। श्रोताओं, बहुत समय के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है, पता नहीं आपको ये चीज़ लग रही है नहीं, मुझे बहुत लग रहा है कि शायद बहुत लंबे टाइम के बाद मैं शायद आपसे मिली हूँ, क्योंकि आजकल जैसे कि शारदीय नवरात्रि भी चल रही हैं और मुझे लगता है कि आज मेरी आपसे नवरात्रों में पहली मुलाकात है, तो आप सभी को जय माता दी। साथ ही श्रोताओं, शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और स्कंद माता की पूजा आज की जाती है, तो माता स्कंद माता से हम यही अरदास करेंगे कि हमारे सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूर्ण हों और वो खुश रहें। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद श्रोताओं, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो भी फेसबुक लाइव पेज पर जुड़े हैं। इंदु जी गुड इवनिंग, आप हमें गुड इवनिंग कह रही हैं, आपको भी गुड इवनिंग, और ये कह रही हैं कि बहुत टाइम बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं हम। बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है श्रोताओं। हमारे लिए एक एक दिन जो है वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है आपसे मिले हुए, और हम आपसे ना मिलें, आपसे बात ना हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। आपके इस प्यार के लिए और आपके इस सादर हमारा आमंत्रण करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ ज़रूर जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि जल्दी से कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए, और बहुत सारी बातें आपके साथ होने वाली हैं। आप भी अपने मन की बात हमारे साथ कर सकते हैं, फेसबुक लाइव पेज पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करेंगे श्रोताओं एक प्यारी सी माता की भेंट के साथ, क्योंकि नवरात्रों का समय है, शाम का समय है, इस समय मंदिरों में भी पूजा अर्चना चल रही है और माता के मंदिरों में बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। हम यहीं बैठे बैठे हाजिरी लगवाएंगे, और साथ ही आपकी भी हाजिरी जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से लगेगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन के साथ, यूँ ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: खड़गम चक्र गदेशु चाप परिदान शूलं शुंडीशिर शंखं तंगद सिंह करैस्त्रिनयनं सर्वांग

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हमने की माता के इस भजन के साथ। साथ ही श्रोताओं, आजकल के दिन आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं और सर्दियां जो हैं वो भी आ गई हैं, और ऐसे में हम सभी भक्तिमय माहौल में तो चल ही रहे हैं, साथ ही सर्दियों में भी होने वाले जो काम हैं उन्हें भी हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं बहुत सारी तैयारियां हमें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं, वो भी आजकल हम कर रहे हैं श्रोताओं। और आप कोई भी काम कर रहे हो श्रोताओं, लेकिन रेडियो गुंजन धर्मशाला हमेशा आपके साथ है, यानी कि किसी भी काम को करते हुए अगर आप रेडियो गुंजन धर्मशाला को ट्यून करेंगे तो सच मानिए आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली होंगी, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, और साथ ही आपका मनोरंजन भी हम लोग करते रहते हैं समय समय पर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमने शारदीय नवरात्रि की आज 5वें दिन की बात की है, तो थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि आखिर आस्था क्या है, विश्वास क्या है, और भगवान हमारे जीवन में क्या स्थान रखते हैं। श्रोताओं, क्या भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यही है कि हमारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? क्या सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें हम भगवान से कुछ मांगते हैं? या फिर आस्था का अर्थ ये भी है कि जब जीवन में सब कुछ हमारे मन के अनुसार ना हो तब भी हम अपने भीतर उम्मीद और हिम्मत बनाए रखें? तो श्रोताओं, जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मन बहुत खुश होता है, परिवार भी हमारा खुश होता है और भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, उस समय भगवान को धन्यवाद देना बहुत आसान लगता है। लेकिन जब परेशानियां आती हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब कोई अपना कठिन समय से गुजर रहा होता है, या जब मन में अनेक सवाल उठते हैं, तब हमारे विश्वास की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल श्रोताओं, और असली परीक्षा ही वो परीक्षा है जिसमें हम अगर उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो जीवन में हम कभी भी निराश नहीं होते हैं। समय कैसा भी क्यों ना हो, हमें हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा समय भी हमें कुछ ना कुछ दे कर जाता है, बुरा समय भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए कैसा भी समय क्यों ना हो, अपने अंदर एक उम्मीद की किरण जो है वो हमेशा हमें जलाए रखनी चाहिए, जैसा कि आजकल हम लोग अपने मंदिरों में भी माता की जोत जलाए हुए हैं, और हमारा ध्यान यही रहता है कि माता की वो अखंड जोत जो है वो निरंतर जलती रहे। तो अपने मन में भी एक उम्मीद का दिया हमेशा जलने दीजिए, उसे जलाए रखिए। बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब लगता है कि वो दिया बुझ जाएगा, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो उस दिए को हमेशा बरकरार इसी तरह से जलते रख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम का विचार भी यही है श्रोताओं। कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आज होने वाली हैं श्रोताओं, रोज़ाना आपके साथ होती ही हैं, आज भी होंगी, तो चलिए बातों को यहीं पर रोकते हैं और फिर से कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के एक और खूबसूरत से गीत की ओर। और श्रोताओं, दीवाना फिल्म से लिया हुआ ये गीत है, कुमार शानू की आवाज़ है।

बिल्कुल श्रोताओं, दीवाना कर देने वाले गाने हैं इस फिल्म के, यानी कि दीवाना फिल्म के। और अभी जो आपने गीत सुना, सच में बहुत ही प्यारा गीत है। जब भी इसे सुना जाए, कहीं ना कहीं हमारे होंठ भी अपने आप इसे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे गीत जब भी सुन लिए जाए, अच्छे ही लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत पसंद आया होगा, और बाकी के गीत भी आपको पसंद आएंगे श्रोताओं। लेकिन बाकी के गीतों को सुनने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपको बता दूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी आरजे दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातों के साथ साथ जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं जानकारी की ओर, बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है जानकारी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने जन सुविधा एवं प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस पुनर्गठन में नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन, मौजूदा इकाइयों का विलय तथा उनका विभाजन शामिल है। साथ ही श्रोता, उन्होंने बताया कि आयोग हिमाचल प्रदेश में जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप तहसीलों, विकास खंडों और अन्य विभागीय मंडलों की मौजूदा संरचना की समीक्षा करेगा। आयोग द्वारा जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, पहुंच, प्रशासनिक दक्षता और जन सुविधा के दृष्टिगत नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन, विलय विभाजन तथा पुनर्गठन की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। साथ ही श्रोताओं, प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व, वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वन, लोक निर्माण, जल शक्ति और सामान्य प्रशासन विभागों के प्रशासनिक सचिव आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल इनवाइटी के रूप में विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और विशेषज्ञ सुझाव प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही श्रोता, उन्होंने कहा कि अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले आयोग संबंधित हितधारकों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से परामर्श करेगा। आयोग नई प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना और कार्यबल की जरूरतों सहित वित्तीय प्रभावों का भी आकलन करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना संसाधनों के बेहतर उपयोग और मौजूदा कार्यालयों के कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उपाय प्रस्तुत किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी, और इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से समय है आपको गीत सुनवाने का। लेकिन इस गीत को सुनने से पहले हमें कार्यक्रम में लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए इस गीत को, जिसे हम लेकर आए हैं एक दूजे के लिए फिल्म से। आवाज़ों से सजाया है इस गीत को लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत, और श्रोताओं इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे बातचीत। बिल्कुल श्रोताओं, और आज 15 अक्टूबर का दिन है। आज आप सभी ने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी सुबह सुना होगा इस विषय पर, क्योंकि आज हम सभी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मना रहे हैं। तो श्रोताओं, आज के दिन हम बात करेंगे उनकी जो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, जिनकी आंखों में सपने होते हैं, मन में कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, और जिनके कंधों पर आने वाले कल की जिम्मेदारियां होती हैं। श्रोताओं, विद्यार्थी जीवन केवल किताबें पढ़ने, परीक्षा देने और अच्छे अंक प्राप्त करने का नाम नहीं है। विद्यार्थी जीवन वह समय है जब इंसान अपने व्यक्तित्व की नींव रखता है। इसी समय वह सीखता है कि जीवन में सफलता क्या है, असफलता से कैसे निपटना है, दूसरों का सम्मान कैसे करना है, और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कैसे करनी है। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो विश्व विद्यार्थी दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सवाल हमारे दिमाग पर ज़रूर आएगा। और आप ही रहा होगा तो आपको बता दें, हर साल 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि विद्यार्थी और युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपना जीवन विज्ञान, शिक्षा और देश के विकास के लिए समर्पित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी विद्यार्थियों के साथ संवाद करना और उन्हें प्रेरित करना उनके सबसे प्रिय कामों में शामिल रहा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, अगर हमारे भीतर सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने का संकल्प है, तो हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम में आज के दिन पर हम यही कहेंगे कि अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और कुछ लोगों को वो मेहनत थोड़े समय के लिए करनी पड़ती है, कुछ लोगों को ताउम्र मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन श्रोताओं, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इस बात को हमेशा याद रखिए। आज आपके समक्ष आपकी लाइफ पड़ी है, युवाओं के लिए हम ये बात कह रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी हैं, तो अपने जीवन में अपनी शिक्षा को उस तरह से लीजिए कि आप अपनी उस मंजिल पर पहुँच सकें। साथ ही हम पेरेंट्स से भी यही कहेंगे कि एक विद्यार्थी की सबसे पहली शिक्षा उसके घर से शुरू होती है। आप घर से ही अपने बच्चे को वो शिक्षा दीजिए जिसे देखकर हर कोई कहे कि एक अच्छे परिवार से ये विद्यार्थी आया है। बिल्कुल श्रोताओं, शिक्षा कहीं भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। हम किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाएं, शिक्षा हमें मिलती रहती है। कई बार हम एक छोटे से बच्चे से भी बहुत बड़ी शिक्षा लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी का नाम है सीखना, और हमेशा सीखने के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। तो कार्यक्रम में अब बातों को यहीं पर रोकते हैं और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। तो लीजिए, दस्तक फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और मदन मोहन की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गीत। बहुत ही खूबसूरत गीत है श्रोताओं, मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपनी जिया की, जो कि 1970 में आई फिल्म दस्तक का है। इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज़ दी। इसके संगीतकार मदन मोहन थे और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। इस गीत का एक विशेष संस्करण मदन मोहन की अपनी आवाज़ में भी मिलता है, जो कि आपने अभी अभी कार्यक्रम में सुना। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं। मदन मोहन ऐसे ही संगीतकार थे जिन्हें हिंदी फिल्म संगीत में गज़लों और भावपूर्ण धुनों के लिए विशेष पहचान मिली। फिल्म दस्तक का ये गीत मन की पीड़ा और विरह की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसमें एक स्त्री अपने दिल की व्यथा किससे कहे, इसी उलझन को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों और मदन मोहन के संगीत ने इस गीत को एक ऐसी संवेदनशीलता दी है जो सुनने वाले को भावनाओं की गहराइयों तक ले जाती है। श्रोताओं, इस गीत की एक ख़ास बात ये भी है कि मदन मोहन ने इसे लता मंगेशकर के लिए तैयार करते समय अपनी आवाज़ में एक अस्थाई रिकॉर्डिंग की थी। बाद में वही रिकॉर्डिंग संगीत प्रेमियों तक पहुंची और लोगों ने मदन मोहन की आवाज़ में भी इस गीत का आनंद लिया। और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मदन मोहन की आवाज़ में इस गीत को सुना और ज़रूर इस गीत का आनंद लिया होगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, गीतों की इस श्रृंखला को यहाँ रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे और लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं इस गीत को उस्तादों के उस्ताद फिल्म से, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इस समय आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और इस कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं बातचीत और साथ ही आपका मनोरंजन करते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार, तो कुछ ही समय बाद समय हो जाएगा समाचारों का। तो चलिए समाचारों से पहले ले लेते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत, शरीफ बदमाश इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सभी के रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं समाचार।

0: सुविधाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं और मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति आज लद्दाख में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान है। पानी की प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने, 2045 तक विकसित भारत बनाने में योगदान का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 31 मार्च तक

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इन समाचारों के बाद। और श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत समाचारों के बाद अब फिर से करेंगे हम एक और गीत के साथ। तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं धुरंधर फिल्म से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाम के इस समय की। समय शाम का है, शाम हो गई है और हवा में हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी है। कहीं घरों में चाय बन रही होगी, कहीं रसोई से गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आ रही होगी, तो कहीं माँ अपने बच्चों को आवाज़ लगा रही होगी कि अब बाहर से घर आ जाओ, ठंड बढ़ रही है। बिल्कुल सर्दियों का ये समय है और ये सब चीज़ें जो हैं हमारे घरों में देखने में मिल जाती हैं। लेकिन श्रोताओं, आज जब सर्दियों का मौसम फिर से दस्तक दे रहा है तो मन में एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो शायद आप में से बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। क्या पहाड़ों की सर्दियां पहले जैसी ही रही हैं या वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है? श्रोताओं, क्या आपको याद है बचपन की वो सर्दियां जब सुबह उठते ही ठंड का एहसास होता था, जब घर के बड़े बुज़ुर्ग मौसम देखकर बता देते थे कि आज धूप निकलेगी या बादल छाए रहेंगे, जब सर्दियों की शामें परिवार के साथ बैठकर बीतती थी और एक छोटी सी अंगीठी के आसपास बैठकर न जाने कितनी बातें हुआ करती थी। आज भी सर्दियाँ आती हैं, ठंडी हवाएँ चलती हैं, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, चाय का आनंद लेते हैं, लेकिन क्या मौसम का मिजाज, हमारी दिनचर्या और सर्दियों को जीने का हमारा तरीका पहले जैसा रह गया है? इन्हीं यादों और अनुभवों और सवालों के साथ हम बात कर रहे हैं आज सर्दियों की। बिल्कुल श्रोताओं, और सर्दियों की बात जब करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें हमारे समय की, अपने अपने बचपन की याद आ जाती हैं। अपने बचपन की अगर हम बात करें, उन यादों की ओर लौट कर देखें, तो पहाड़ों में सर्दियों का मौसम आते ही घरों की दिनचर्या बदल जाती थी। सुबह सुबह उठना, पानी गर्म करना, धूप निकलने का इंतज़ार करना और फिर घर के आंगन या छत पर बैठकर धूप सेंकना, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। कई घरों में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था, रसोई की गर्माहट, जलती लकड़ियों की महक और परिवार के सदस्यों का एक साथ बैठना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। गाँव में लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, किसी के घर में मक्की की रोटी और सरसों का साग बन रहा हो तो कहीं सिड्डू तैयार हो रहे हों, कहीं अखरोट और सूखे मेवे रखे हैं, तो कहीं घर की बनी घी शक्कर के साथ गर्म रोटी खाने का आनंद लिया जा रहा है। तो श्रोताओं, पुराने समय की बात हम कर रहे हैं और किसी के घर में अगर साग बन जाता था या मक्की की रोटी बन जाती थी तो ज़रूर अड़ोसी पड़ोसियों को भी हम ज़रूर दिया करते थे और वो हमें दिया करते थे और देना लेना उस समय बहुत चला करता था, लेकिन आजकल के समय में वो चीज़ें गायब सी होती नज़र आती हैं। आजकल के समय में घर के जो चूल्हे हैं वो भी कहीं खो से गए हैं श्रोताओं, और बचपन में अगर चूल्हों की बात करें, पुराने कच्चे घर हुआ करते थे, कच्चे घर ना भी हों, पक्के घर क्यों ना हो, चूल्हा जो है वो किचन में हुआ करता था। और जब सर्दियां हुआ करती थी तो भाई बहनों की लड़ाई हुआ करती थी कि चूल्हे के आगे कौन बैठेगा, और एक बार अगर बैठ गए और कहीं गलती से माँ ने कोई काम बोल दिया कि ये काम करना है, तो उठने से पहले ये डर बना रहता था कि जैसे ही हम उठेंगे हमारी सीट पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। तो हम ये कहकर उठते थे कि भाई ये मेरी सीट है और इस सीट पर कोई नहीं बैठेगा, और जब वो कहते थे कि ठीक है कोई नहीं बैठेगा, लेकिन उठने के बाद उस सीट पर किसी और का कब्जा हो जाया करता था। तो श्रोताओं, ऐसी ऐसी नोकझोंक जो है उस समय में हुआ करती थी और चूल्हे के आगे बैठने का अपना ही मज़ा हुआ करता था, जो कि अब बहुत कम गांव में ही देखने को मिलता है। खैर, सर्दियों ने हमें हमारे पुराने दिन याद दिला दिए, पुरानी यादें जो हैं वो भी हमने ताज़ा कर ली हैं और अब बातों को यहीं पर रोकेंगे, ज़्यादा लंबी बातें हो जाएंगी तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो चलिए, आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, ये गीत बहुत ही प्यारा है क्योंकि पुराने समय की इसमें भी झलक आती है कि हम कहीं भी जाने के लिए जब तैयार होते थे तो हम ये कहते थे कि आज हम रुक गए हैं लेकिन सुबह वाली गाड़ी से हम फिर से चले जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं ये गाड़ी और ये जाने वाला क्या कहता है। लाड साहब फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी सुना आपने ये गीत सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। बिल्कुल श्रोताओं, और हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है और अपनी गाड़ी जो है वो समय पर लेनी होती है। खैर, इन्हें तो सवेरे वाली गाड़ी से जाना है, लेकिन हमें यानी कि मुझे तो आज अभी की गाड़ी में जाना है, शाम की गाड़ी से। लेकिन हम भी ये वादा करते जाते हैं कि आपसे फिर से मुलाकात होगी और आप सभी भी हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। ये वादा हम आपसे करते हैं और आप हमसे कीजिए कि रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो श्रोताओं, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे सर्दियों की और पुराने समय की, अब ज़रा बात करते हैं हमारे रहने सहने की, रहन सहन की। पहले सर्दियों की तैयारियाँ केवल गर्म कपड़े निकालने तक सीमित नहीं होती थी। घरों में अनाज जमा किया जाता था, अचार और दूसरे खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते थे, पशुओं के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाता था और घर की ज़रूरतों के अनुसार कई काम पहले से ही पूरे कर लिए जाते थे। पहाड़ी जीवन में मौसम के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता था। गांव में लोग मौसम को ध्यान में रखकर खेतीबाड़ी और दूसरे कामों की योजना बनाते थे। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। किसी को पशुओं की देखभाल करनी होती थी, किसी को खेतों का काम देखना होता था और किसी को घर की व्यवस्था संभालनी होती थी। आज जीवन में बहुत सी सुविधाएं आ गई हैं। बाज़ार से ज़रूरत का सामान आसानी से मिल जाता है। घरों में हीटर और दूसरे उपकरण उपलब्ध हैं और संचार के साधनों ने दूरियों को कम कर दिया है। ये सुविधाएं अच्छी हैं और जीवन को आसान बनाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आधुनिकता के साथ हमने अपनी कुछ अच्छी परंपराओं को भी पीछे छोड़ दिया है? आज भी बच्चों को मालूम है क्या आज भी बच्चों को मालूम है कि उनके दादा दादी या नाना नानी सर्दियों को किस तरह से बिताते थे? क्या उन्हें पारंपरिक पहाड़ी भोजन, पुराने घरेलू हुनर और स्थानीय संस्कृति के बारे में पता है? हमें पुरानी ज़िंदगी की हर कठिनाइयों को दोबारा अपनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन परंपराओं को ज़रूर सहेजना चाहिए जो हमें परिवार, प्रकृति और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। कहने का भाव ये है श्रोताओं कि हमें हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उन्हें अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपने समय में देख चुके हैं और अब हमारे पास वो सिर्फ यादों के रूप में है, लेकिन उन यादों को उन तक भी पहुंचाना है, उन्हें भी अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है। तो श्रोताओं, आपको भी हमारे साथ जोड़े रखते हैं ये प्यारे प्यारे गीत। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, आई मिलन की रात फिल्म का गीत सुनते हैं, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत के बाद श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम में और आपको सुनवाएंगे प्रेरणादायक कहानी। तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायक कहानी। तो श्रोताओं, आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है और ऐसे में आपको उनकी ही जीवन की एक कहानी सुनाना चाहूँगी। श्रोताओं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्हें कुछ ना कुछ जानने की इच्छा हमेशा रहती थी। वो बहुत सारे सवाल उठाया करते थे और एक दिन उनकी क्लास में उनके जो साइंस के जो अध्यापक थे वो उन्हें पक्षियों के बारे में बता रहे थे कि पक्षी किस तरह से उड़ते हैं। लेकिन जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके मन में ये सवाल तब तक उठता रहा कि आखिरकार पक्षी उड़ते कैसे हैं, और उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने उन्हें अपने शिक्षक से फिर से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पक्षी जो हैं वो आसमान में किस तरह से उड़ते हैं। तब जो विज्ञान के शिक्षक हैं उन्होंने उन्हें उड़ान के बारे में समझाने के लिए किताबों के ज़रिए नहीं, उन्हें समुद्र के किनारे लेकर गए और पक्षियों को उड़ते हुए देखने को और उनकी गतिविधियों को समझने का अवसर दिया। कलाम ने पक्षियों को ध्यान से देखा। उन्होंने समझने की कोशिश की कि उनके पंख किस तरह से काम करते हैं और वे हवा में अपना संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। इस अनुभव के उनके मन में उड़ान और विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा की। आगे चलकर यही रुचि उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने की दिशा में लेकर गए। श्रोताओं, ज़रा सोचिए, एक बच्चे के मन में उठा सवाल, एक शिक्षक का सही मार्गदर्शन और सीखने का एक व्यवहारिक अनुभव, इन सब ने मिलकर उनके भविष्य को एक नई दिशा देने में भूमिका निभाई। यही बालक आगे चलकर भारत का महान वैज्ञानिक बना।

देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि बच्चों के सवालों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, एक अच्छे शिक्षक का काम केवल पाठ पढ़ाना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भीतर जिज्ञासा और आत्मविश्वास जगाना भी है। और तीसरी बात, जब हम किसी विषय को समझने के लिए उत्सुक रहते हैं तो सीखने के लिए नए रास्ते भी खुलते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें प्रेरित करता है कि अपने सपनों को पहचानने, ज्ञान हासिल करें और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। तो श्रोताओं, ज़रूर आपको इस कहानी यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी से जुड़ी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। खैर, उनका पूरा जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और उनसे सीखने को भी मिलता है। तो चलिए, अब बातों को यहीं पर रोकते हैं और कार्यक्रम में लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए इस गीत को आप सभी अपने अपने रेडियो सेट्स पर। आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपकी अपनी आरजे दोस्त सुषमा के साथ।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। साथ ही श्रोताओं, आप सभी हमारे साथ हमारे फेसबुक लाइव पेज पर भी जुड़ते हैं और हमारे साथ थोड़ी देर पहले ही जुड़े थे अश्वनी सुकेतिया जी। वो कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम। अश्विनी जी, आपको भी गुड इवनिंग और आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आज हमने बात की वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे पर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस कार्यक्रम में तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। और साथ ही श्रोताओं, थोड़ी सी बात आज हमने की सर्दियों के मौसम को लेकर भी। सर्दियाँ आज भी वही हैं, लेकिन समय जो है वो थोड़ा बदल गया है। पहले के समय में सर्दियाँ कुछ और तरह से हुआ करती थी, हम परिवार में इकट्ठा बैठते थे, और अब फिर वही बात कि हमारे अपने अपने रूम्स हैं, अपने अपने ब्लोर हैं, अपने अपने हीटर हैं। हम सभी अपने अपने काम करने के बाद अपने अपने रूम में जाकर अपने अपने हीटर के आगे बैठ जाते हैं। खैर, कोई बात नहीं, समय के साथ चलना पड़ता है, चलना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को समय भी देना चाहिए। फैमिली में थोड़ा सा समय हमें साथ में गुजारना ज़रूर चाहिए। आजकल के हमारे जो माता पिता हैं, हम जो हैं, हमें भी अपने बच्चों को अपने साथ बिठाना है, उनसे बातचीत करनी है, ताकि उनमें वो प्रेम भाव और वो हर बात को कहने में हमारे समक्ष जो है अपने आप को अच्छा फील करें, तो उनके साथ हमें समय बिताना पड़ेगा। और समय की यही मांग है श्रोताओं कि समय ना होते हुए भी हमें एक दूसरे को समय देना है। तो कार्यक्रम में अब आगे चलते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आप सुन रहे हैं ये गीत, और कुछ ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

see it.

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। किसी कारण से श्रोताओं आपको समाचार नहीं सुनवा पाए, लेकिन कार्यक्रम में हम अभी भी हैं आपके साथ बात करने के लिए और आपका मनोरंजन करवाने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम में लेते हैं एक और प्यारा सा गीत और सुनिए इस गीत को आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्यारे प्यारे गीत। उम्मीद करते हैं आपको सुनवाए जाने वाले गीत पसंद आते होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हमारे पास समय कम है, यानी कि 8 बजने ही वाले हैं। तो चलते चलते आपको अभी भी हम सुना के जाएंगे कुछ एक गीत। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक और प्यारा सा गीत शहजादा फिल्म से। आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम का अब समय भी समाप्ति की ओर है श्रोताओं। कुछ ही पल में अभी ये जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा और जाने से पहले आपको सुनवा कर जाऊँगी आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। लीजिए आराधना फिल्म का ये गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में, और साथ ही अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

नवरात्रि के पांचवे दिन मां स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। मां स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी

0: काला है नीला,
1: सूखा है नीला, हरा है गीला।
2: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
1: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
3: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
1: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
3: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों
6: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
12: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित, मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग।
14: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। कांगड़ा ऊना के शक्तिपीठों में डीआईजी सौम्या ने किया दौरा, ज्वाला देवी मंदिर के पुजारी कपिल मुनि ने करवाई पूजा। डीसी कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित, उपायुक्त हेमराज वैरवा ने किया शुभारंभ। ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ रही DDU-GKY योजना। सीएम सुक्खू ने थपथपाई जाएगा स्वयं सहायता समूहों की पेट, मुख्यमंत्री ने की लादरचा मैदान काजा में लगे रसायन मुक्त उत्पादों की सराहना। छर्मा और गलीचा तैयार करने वाली महिलाओं की मेहनत पर उन्हें दी शाबाशी। अब इसी के साथ समाचार विस्तार से।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा के तत्वाधान में जिला परिषद सभागार में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक पवन नैयर ने की। शिविर में ग्रामीण युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पवन नैयर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तंगी और रोजगार के सीमित अवसरों की चुनौती से निपटने के लिए युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। DDUJKY योजना ग्रामीण परिवार गरीब परिवारों के युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ने तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2014 में शुरू की गई इस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 18,47,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि 12,43,000 से अधिक युवा रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा दौरे के दौरान जायका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की पीठ थपथपाई। लादरचा मैदान में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जायका वानिका परियोजना द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचे तो परियोजना से जुड़ी 6 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं काफी उत्साहित दिखी। मुख्यमंत्री ने यहां बिक्री और प्रदर्शनी के लिए लगाए गए प्राकृतिक एवं रसायन मुक्त उत्पादों की सराहना की। खासकर विटामिन सी यानी चर्मा के उत्पादों और हस्तनिर्मित गलीचे तैयार करने वाली महिलाओं की मेहनत को देख सीएम सुक्खू ने उन्हें शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आज आत्मनिर्भरता से आजीविका सुधार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। आयुष विभाग की ओर से ऑस्टियोपोरोसिस एवं मस्कुलोस्केलेटल विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत DC कार्यालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया गया। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का उद्देश्य लोगों को हड्डियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना,

मंदिरों में डीआईजी सौम्या सामसिवन ने शक्तिपीठों में जहां देवी के दर्शन किए, वहीं पुलिस द्वारा किए गए इंतजामों को भी जांचा। ज्वाला देवी मंदिर पहुंचने पर मंदिर के कुलपुरोहित कपिल मुनि ने उनसे भी दिवस पूजा अर्चना कराई और मां ज्वाला का आशीर्वाद पंचमी नवरात्र में दिया। आगामी सप्तमी अष्टमी नवरात्र में पुलिस के बेहतर प्रबंधन में कोई भी कमी ना रहे, इसलिए इस दौरे को प्रमुखता से देखा जा रहा है। दिव्यांगजन, वृद्धों व विधवाओं सहित समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले 5 वर्ष तक यानी 2030 से 31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए उनसे जुड़ी पेंशन स्कीम का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसके तहत 40% की दिव्यांगता पर ही दिव्यांगजन जन्म से पेंशन के हकदार होंगे। अभी ये पेंशन 18 वर्ष से अधिक आयु और 80% की दिव्यांगता वालों को ही मिलती है। इसके अतिरिक्त उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। फैसलों के अनुसार एनसीएपी और इससे जुड़ी तीनों योजनाओं के नामों में भी बदलाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस वर्ष प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर तक कुल्लू में किया जाएगा। उनका कहना है कि राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 21 अक्टूबर को इस उत्सव का शुभारंभ करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य शैलियों के संगम पर आधारित ग्लोबल डांस कार्यक्रम इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण होगा। इसके अतिरिक्त ड्रोन और लेजर शो भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ये कुल्लू दशहरा का मुख्य आकर्षण होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एजुकेटर्स के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्हें निचली श्रेणी के कर्मचारियों से कम वेतन देने की विसंगति को दूर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 30 जनवरी 2016 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को 1 फरवरी 2016 से 4200 रुपए का ग्रेड पे दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पदोन्नत पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के बराबर या उससे कम ग्रेड पे देना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने माना कि निचली श्रेणी के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को 1 अक्टूबर 2012 से 4200 रुपए का ग्रेड पे मिल रहा था, जबकि उनसे ऊंचे पद पर बैठे स्वास्थ्य शिक्षकों को भी यही ग्रेड पे देना और भी बाद की तारीख से तार्किक नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के दुर्गम और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जनजातीय सीमावर्ती क्षेत्रों में 116 करोड़ 28 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी के रोगोंग में बैटरी रोंगटोंग बैटरी स्टोरेज से संचालित प्रदेश के पहले और सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। सुनते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: गीला हरा है गीला, सूखा है गीला हरा है गीला।
1: बंटी ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भैरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नज़र।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंदमाता की पूजा का विशेष महत्व है। माँ स्कंदमाता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे भक्तों को वैराग्य, मोक्ष और अपार सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
3: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों
6: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
12: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित, मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग अपना।
14: HIV/AIDS अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: अरे ललक, तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणिया करती है। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना लेकर। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की भक्ति शक्ति और आराधना से सजी इस सुहानी बेला में आप इस प्यारे से कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना के साथ जुड़ चुके हैं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की वंदना करेंगे। तो आइए अपने मन को भक्ति के रंग में रंग दें और माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करें। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की माँ कात्यायनी जी की आरती के साथ।

शुद्ध नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित है। आज का दिन है माँ कात्यायनी की आराधना का, जिन्हें शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों को साहस मिलता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए माँ के इसे दिव्य स्वरूप को नमन करते हुए सुनते हैं माँ की कथा।

दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ भवानी की उपासना की थी और उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया था, इसलिए ये देवी माँ कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी की चार भुजाएं हैं, दाई ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाई ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ का वाहन सिंह है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं माँ का ये प्यारा सा भजन।